91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

इस वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्म शाला। तो श्रोताओं सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्म शाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के।

श्रोताओ, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

0: से तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

आज समझे।

91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने का ये सफर अब यहीं पर होता है संपन्न। ज्योति को दीजिए अब अनुमति, जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और कार्यक्रम में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए। लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप
3: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की।

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो
2: अरे भूल गए भूल गए भूल गए अरे भूल गए भूल गए भूल गए।
1: चुप यार। पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार।

0: आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां, तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: ले जाएगा ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे बुरबक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो,

0: और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
2: डॉक्टर,
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
0: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
0: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
2: वो किसी को भी हो सकता है।
0: हाँ, और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरालाल।
1: चलो,
0: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: अरे ले आओ यार नाश्ता।
4: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
5: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
4: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
3: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
4: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
5: अबे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
4: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या? हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं ना नाश्ता बना लेती हूँ।

दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जमाने से थककर जो लौटे हैं घर को, उन्हें क्या खबर कि घर भी बदलते होंगे। जो घरों से ही थककर निकलते हैं चुपचाप, वो किस दर पे जाकर संभलते होंगे। किसी की हंसी में जो शामिल नहीं है, वो तन्हाइयों में ही जलते होंगे। जिन्हें नींद नहीं आती रात भर, अब वो यादों के तकियों पे ठलते होंगे। नजर जिनकी हर मोड़ पर भीगी सी है, कई हाथ से दिल में पलते होंगे। जो कहते हैं सब ठीक है मुस्कुरा कर, वो अंदर ही अंदर बिखरते होंगे। किसी को तो मिलती होगी एक पनाह भी, मगर कुछ मुसाफिर भटकते होंगे। जमाने से थककर जो लौटे हैं घर को, जो घरों से ही थकते होंगे, वो कहां लौटते होंगे। नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। हाजिर हो गई हूँ आप सभी का बहुत ही खास कार्यक्रम लेकर, गुड मॉर्निंग धर्मशाला। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं, और गर्मी से कुछ हद तक आप सभी को अब राहत भी मिली है। आज 19 जुलाई 2026 का दिन बहुत खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा, एक नई शुरुआत नए दिन के साथ, नए पलों के साथ। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मनोरंजन की इस प्यारे से गीत के साथ, क्योंकि बातें भी होंगी और गीत संगीत भी होगा, और साथ साथ ही कुछ खास जानकारियां भी होंगी।

तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने इंजॉय किया और कार्यक्रम आप सभी इंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। इस बहुत ही प्यारे से इन पलों को आप सभी इंजॉय करने वाले हैं आज संडे वाले दिन, अपनों का दिन, खुद का दिन हुआ ना खास दोस्तों, तो पल भी खास होते हैं। खैर इसी के साथ आप सभी को लेकर चलते हैं मौसम की अपडेट की ओर। तो दोस्तों इस समय धर्मशाला के तापमान की हम बात करें तो लगभग आप सभी महसूस कर सकते हैं 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है इस समय का तापमान है। और साथ ही मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि उसी से तो हम खुद को सतर्कता और सावधानी की ओर लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों हिमाचल में इस मानसून सीजन के चलते पहली बार भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। जी दोस्तों मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 20 जुलाई को 4 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 21 जुलाई को 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और कुल्लू जिला में भारी बारिश का रेड अलर्ट रहेगा। जी दोस्तों तो इस तरह से मौसम विभाग की तरफ से हमारे लिए ये एक सतर्कता से भरा अलर्ट है कि ताकि हम कोई भी अपनी मनमानी के चलते कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि हमें बाद में पछताना पड़े या फिर किसी को परेशानी में डलते हुए देखना पड़े, है ना। तो ये सारी बातें हमारे लिए होती हैं और हम ही इन्हें नजरअंदाज करते हैं। तो आइए दोस्तों इसी अपडेट के साथ, इसी न्यूज़ के साथ और आंखों देखा हाल भी आप सभी को बता देती हूँ। बहुत ही प्यारी सी हल्की हल्की सी बारिश इस समय लगी हुई है। रात को तो खैर बहुत सारी हुई है लेकिन अभी फिलहाल जो है वो हल्की हल्की सी बारिश आप सभी इंजॉय कर रहे हैं। बरसात का मौसम है और बारिश ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिलहाल आइए साथ ही साथ मनोरंजन की बारिश भी आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से होने को तैयार ही बैठी है, बस इंतजार है तो आपके इस प्यारे से पेशेंस का, आपकी इंतजार का। तो इंतजार किस बात का दोस्तों, आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रचिका के साथ, ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारे मनोरंजन के साथ। तो इस प्यारे से गीत को आप सभी ने एंजॉय किया सोनू निगम अलका याग्निक के आवाजों के साथ। जी दोस्तों, और आज के कार्यक्रम में बहुत ही खास बातें जो है वो रहने वाली हैं। तो क्या ऐसी खास बातें रहने वाली हैं दोस्तों? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कम बोल कर जो है वो बातें कहीं नहीं जा सकती, लेकिन एक छोटे से शब्द में भी ना पूरी कहानी बयां कर सकते हैं अगर किसी में ये जज्बा हो, किसी में ये जुनून हो। और कई बार तो लोगों की चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। तो फिर लोग कौन सी गलतफहमी में है कि ज़्यादा बोलने से ही हम कुछ कह सकते हैं, कम शब्दों में अपनी बात को हम रख ही नहीं सकते। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण आप सभी को बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों, मौसम ही ऐसा है कि मन गाने का ही करता है, गुनगुनाने का ही करता है। तो गुनगुनाइए ना, किसकी परमिशन का इंतजार कर रहे हैं? जिंदगी आपकी है तो उसे खूबसूरत बनाना भी आप ही के हाथों में है। आज तो बहुत ही खास दिन है, सभी का साथ, अपनों का साथ, तो इसे तो खूबसूरत बनाना चाहिए जरूर। दोस्तों, फिलहाल 9:20 हो चुके हैं और हमें अपने कार्यक्रम को भी खूबसूरत बनाना है समाचारों के साथ। तो आइए दोस्तों, जानते हैं अपने आसपास की कुछ खास जानकारियां, उसके बाद फिर से आप सभी के साथ मुलाकात होगी ढेर सारी बातों और मनोरंजन के साथ।
1: यात्रा वर्षी वैष्णो देवी यात्रा फिलहाल स्थगित की गई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों को हेलीपोर्ट नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में सरकार तेजी से कार्य कर रही है। कल चंडीगढ़ में लीडरशिप कॉन्क्लेव और 23वीं वार्षिक आम बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के 5 जिले अगले 4 माह में हेलीपोर्ट सुविधा से जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे चंडीगढ़ से शिमला और चंडीगढ़ से पालमपुर के बीच आवागमन और अधिक सुगम व सुविधाजनक हो जाएगा।
2: सारे ही 5 डिस्ट्रिक्ट हमारे हेलीपोर्ट से अगले 4 महीने में जुड़ जाएंगे, यानी कि चंडीगढ़ से शिमला आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से 20 मिनट में पहुंच जाओगे, आप 50 मिनट में चंडीगढ़ से पालमपुर पहुंच जाएंगे। 2-3 सालों में आप पूरे हिमाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखेंगे। तो ये सब चीजें चेंजिंग की दृष्टिकोण से हो रही है। हमारा एक गोल है कि हम सेल्फ रिलायंट स्टेट बनना चाहते हैं और बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गईं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। CBSE के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। बोर्ड ने ये भी बताया कि विदेशों में स्थित CBSE से संबद्ध स्कूलों के छात्र भी अपने परिणाम और डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेज डिजी लॉकर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय होने से रात भर से राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। प्रदेश में मौसम विभाग ने मंडी, कांगड़ा व शिमला जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी बारिश से का रेड अलर्ट जारी किया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: इस बीच किन्नौर जिले के सांगला घाटी में कल शाम बादल फटने से मस्तरंग के पास गार्गे नाले में बाढ़ आ गई, जिससे सांगला चितुर्ग सड़क बंद हो गई। वहीं ITBP कैंप से गुमटी और मंदिर बहने का समाचार भी हुआ है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि मेले व त्योहार हमारी संस्कृति पहचान के भिन्न अंग हैं। शिमला जिला के जुब्बल क्षेत्र के 3 दिवसीय जिला स्तरीय रामपुरी जातर मेले के समापन अवसर पर उन्होंने समृद्ध संस्कृति व परंपराओं के संरक्षण के लिए सांझे प्रयासों पर बल दिया। रोहित ठाकुर ने बताया कि जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से करीब 550 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य प्रगति पर हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। केंद्र प्रायोजित एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत जनजातीय जिला किन्नौर में किसानों और बागवानों की आजीविका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उद्यान विभाग द्वारा हाइब्रिड सब्जियों व प्याज लहसुन के उत्पादन पर 80% तक अनुदान दिया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण उत्पादन से किसानों को पारंपरिक खेती की तुलना में बेहतर आय प्राप्त हो सकेगी और इससे स्थानीय स्तर पर बीज उत्पादन को बढ़ावा भी मिलेगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
4: योजना के अंतर्गत टमाटर, गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ब्रसलर स्प्राउट, बीन्स, हरा मटर, शिमला मिर्च, करेला, गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, नोरखोल सहित अन्य सब्जियों के उत्पादन के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र तक सहायता मिलेगी। प्रति हेक्टेयर 30,000 रूपए की स्वीकृत लागत पर 80% यानी अधिकतम 24,000 रूपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा प्राकृतिक परागण वाली प्याज एवं लहसुन की फसलों के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर 25,000 रूपए की लागत पर अधिकतम 20,000 रूपए प्रति हेक्टेयर अनुदान का प्रावधान है। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से रोक दी जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में खराब मौसम के अनुमान के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। इधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। सिरमौर जिले के नाहन में भगवान जगन्नाथ जी की 18वीं रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस रथ यात्रा को लेकर शहर में श्रद्धा और उत्साह का माहौल है। संत हरिवल्लभ ने बताया कि रथ यात्रा को लेकर शहरवासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु सड़कों के किनारे फूल लेकर रथ यात्रा की प्रतीक्षा करते हैं और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने बताया कि आयोजन समिति की ओर से रथ यात्रा के दौरान स्वच्छता और व्यवस्थाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो।
5: हिमाचल में जब यहाँ पे रथ यात्रा निकलती है तो ऐसी फीलिंग आती है हम जगन्नाथपुरी में। हाँ, सिर्फ ये फर्क होता है कि यहाँ पे एक रथ में बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ होते हैं, वहाँ पे 3 रथों में। यहाँ पे अगर हजारों में है तो वहाँ लाखों में, और भक्तों का बड़ा उत्साह रहता है, पूरा शहर इन्वॉल्व रहता है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे रथ के पीछे कुछ यूथ होता है, उनका काम ये है, ये जो पीछे हमारा वेस्टेज पड़ी होती है वो गंदगी कोई रहे ना, वो साथ साथ में उसको उठाते। तो ये बड़ा अच्छा मैसेज है सोसाइटियों की, अगर आप सनातन धर्म का कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो समाज में पीछे गंदगी ना दिखे।
1: और अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। हिमाचल दस्तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखता है, हमीरपुर में 300 करोड़ से बनेगा डेंटल हेल्थ रिसर्च सेंटर। दैनिक जागरण के शब्द हैं, राजीव गांधी के नाम पर होगा डेंटल कॉलेज शिमला। दैनिक भास्कर की एक खबर है, शिक्षा विभाग में आउटसोर्स भर्ती पर रोक, अब वित्त विभाग की मंजूरी के बाद होगी। मौसम पर अमर उजाला का शीर्षक है, सांगला में बादल फटा, ITBP कैंप से गुमटी व मंदिर बहा। दिव्य हिमाचल के अनुसार, मॉनसून सीजन का पहला रेड अलर्ट, प्रदेश के 5 जिलों में 20-21 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी एडवाइजरी जारी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश के 5 जिले अगले 4 माह में हेलीपोर्ट सुविधा से जोड़े जाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 10वीं 2026 की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम किया घोषित। प्रदेश में मौसम ने ली करवट। मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक राज्य के अधिकांश भागों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। संसद का मॉनसून सत्र कल से होगा शुरू, जो 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई और खराब मौसम को देखते हुए जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध श्री अमरनाथ जी यात्रा व श्री वैष्णो देवी यात्रा फिलहाल स्थगित की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

दोस्तों समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास, कहते हैं दूसरों के घर उठने वाला तूफान अक्सर छोटा लगता है, इसलिए सलाह देने वाले भी बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जब वही आंधी अपनी चौखट पर दस्तक देती है तो बड़े बड़े समझदार लोग भी आवाज जो है उनकी धीमी पड़ जाती है। तो दोस्तों हर दिन कार्यक्रम में कोई ना कोई खास बातचीत रहती है, कुछ खास शब्दों के साथ, कुछ खास बातों के साथ। तो उसी तरह से आज के कार्यक्रम में भी बहुत ही खास बातचीत आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी, आप सभी के साथ साझा करने की कोशिश।

दोस्तों इसी प्यारे से गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को एक बहुत ही खास जानकारी की ओर, क्योंकि बातचीत और मनोरंजन के साथ साथ हमारे इस कार्यक्रम का सिलसिला जानकारियों के साथ भी आगे की ओर बढ़ता है, यानी कि उसको खास बनाया जाता है। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 18 जुलाई 2026 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। देश की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने अपने रॉकेट विक्रम 1 पर सफल परीक्षण पूरा कर लिया। पूरी तरह से स्वदेश में विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम 1 ने शनिवार को दोपहर 12:08 पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लॉन्च पैड से सफल उड़ान भरी। ये टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा, तो है ना ये कितनी खास और कितनी गर्व की बात। जी दोस्तों, तो भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट जो है वो लॉन्च हुआ। तो आइए इसी खास जानकारी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे।

प्यारा सा, ये मोटिवेशनल सा देशभक्ति। अब आप सभी यही सोच रहे होंगे कि बात कहाँ अच्छाइयों और कमियों की हो रही थी, लेकिन कहाँ हम देशभक्ति में पहुँच गए। तो दोस्तों, इस देश के लोग हैं हम, इंसानियत है हम में, और आप सभी जानते हैं कि कुछ समय से या आज के दिन की हम बात करें तो खासकर हर एक युवा के जुबान पर ये देशभक्ति गीत गाए जा रहे हैं, और ये गीत उन युवाओं के हौसलों को बुलंद करने के लिए, उन्हें हिम्मत देने के लिए जो युवा दिल्ली में पूरे जोर शोर से बच्चों की शिक्षा के लिए जवाब मांग रहे हैं। जी दोस्तों, शायद 20 जून से जो है ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, आज 19 जुलाई, लगभग एक महीना होने को है, और 20 जुलाई को बहुत बड़ा दिन। आप सभी सोशल मीडिया का यूज करते हैं, हर किसी के फोन में वो रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं आप, और हर न्यूज आपकी आंखों के सामने है। लाखों की संख्या में युवा जो है वो वहां पहुंच रहे हैं समर्थन करने के लिए, उनका साथ देने के लिए, उनकी हिम्मत को बनाए रखने के लिए। जो बच्चे पढ़ाई के चलते, पेपर लीक होने के चलते सुसाइड तक पहुंच रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं,

लोगों से अपील की गई है, युवाओं से अपील की गई है कि 20 जुलाई को जो बहुत बड़ी एक यात्रा जंतर मंतर से सांसद तक होने वाली है, तो युवा उसमें जुड़े। खैर, आप सभी जानते हैं दोस्तों क्या इसमें होने वाला है या क्या नहीं होने वाला है, या खैर जो समय बताएगा उस तरह से। लेकिन हाँ, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये प्रेरणा ले सकते हैं कि बिना किसी को परेशान किए, या यूं कहें कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, पीसफुली से हम अपना जवाब मांग सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी को हर्ट किया जाए। तो ये बातें, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, हमारे देश की बात है ना। तो हर एक युवा जो है जागरूक हो चुका है आज की डेट में, और देश की आवाज बन रहे हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सही है और क्या गलत है? आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आप सभी इस चीज को देख रहे हैं, और इसमें साथ क्योंकि बहुत से बच्चे इनमें ऐसे हैं जो कि आज 18-19 दिन हो गए हैं उन्हें बिना खाना खाए, भूख हड़ताल पे जो है वो वहां पे है, जुड़े हुए हैं लोगों के साथ। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स भी वहां जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे वहां पे जुड़े हुए हैं। और सोनम सर, उन्हें भी 19-20 दिन हो गए हैं इस अनशन पे बैठे हुए। तो बहुत खास बातें हैं, बहुत गंभीर सी बातें हैं, लेकिन प्रेरणा लेने वाली बातें हैं। जहां हम आपस में ये भेदभाव और लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे, कोई रंग के नाम पे, कोई दिखावे के नाम पे, किसी ने कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं, किसी का रंग अच्छा नहीं है, कोई कैसा है तो कोई कैसा, किसी का बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, बस इसी में उलझे रहे हैं। लेकिन यहाँ बात है एकजुट होने की, तो वहां से प्रेरणा लीजिए दोस्तों। कोई रंग का भेदभाव नहीं उस समय, सभी एक दूसरे का साथ बिना किसी बात को सोचे समझे दिया जा रहा है। और युवा पीढ़ी का ये संदेश सभी के लिए वाकई में सोच बदलने वाला है, जो हमारी मानसिक सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमें इन भेदभाव से आगे नहीं बढ़ने देती। कुछ बच्चे इस भेदभाव के चलते अपने सपनों को कुर्बान कर देते हैं, अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देते हैं, तो ये वहां पर बहुत मायने रखती है। खैर दोस्तों, आप सभी बहुत ही अच्छे से जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है, पर लेकिन हमारे आसपास क्या हो रहा है ये हमें जानना, इस पे हमारा विचार करना बेहद जरूरी है। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, इस बहुत ही प्यारे से गीत से पहले हम बात कर रहे थे उन युवाओं के जज्बे की, उन युवाओं की हिम्मत की, बिल्कुल, और साथ ही हमने बात की सोनम जी की, सोनम सर की। तो उनके बारे में खैर आप सभी बहुत अच्छे से जानते ही हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा नज़र डालते हैं दोस्तों जो बच्चों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। सोनम बांगचुक, जिनका जन्म 1 सितंबर 1966 में भारत के एक अभियंता, नवाचारी और शिक्षा सुधारक हैं। वो छात्रों के एक समूह द्वारा 1988 में स्थापित स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक निदेशक भी हैं। संस्थापक छात्रों के अनुसार वो एक ऐसी विदेशी शिक्षा प्रणाली के पीड़ित हैं जिसे लद्दाख पर थोपा गया। सोनम को SECMO के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं करते। जी दोस्तों, सोनम वांगचुक को सरकारी स्कूल व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार, ग्रामीण समुदायों और नागरिक समाज के सहयोग से 1994 में ऑपरेशन न्यू होप शुरू करने का श्रेय भी प्राप्त हुआ। सोनम ने बर्फ स्तूप तकनीक का आविष्कार किया जो कृत्रिम हिम नदों ग्लेशियरों का निर्माण करता है। शंकु आकार के इन बर्फ के ढेरों को सर्दियों के पानी को संचय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आज की हम बात करें तो भूख हड़ताल पे, वो अनशन पे जो है वो बैठे हैं, और उन्हें कल 18 जुलाई को उस स्ट्राइक से कहा जा रहा है कि हॉस्पिटलाइज्ड जो है वो किया गया है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो उसके माध्यम से यही बताया जा रहा है, बाकी तो खैर वहाँ के लोग जानते हैं और जो भी इसमें पार्ट ले रहे हैं वो जानते हैं अच्छे से क्या सच है, किस तरह से है, क्या बातें हैं। लेकिन हाँ, हम सभी को जागरूक होना, सतर्क होना, अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ हम और भी बहुत खास बातें जो हैं आज के कार्यक्रम में करने वाले हैं, लेकिन हाँ ये भी बहुत खास बात है क्योंकि कल 20 जुलाई को देश भर के युवा जो है इसमें समर्थन करने के लिए उतर रहे हैं। बहुत से लोग रास्तों में हैं जो कि वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, रोका भी जा रहा है, लेकिन युवाओं का जज्बा और जुनून जो है पूरे जोर शोर से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, किस तरह से समय कहां की ओर लेकर जाता है। फिलहाल आइए दोस्तों, इसी के साथ समय है एक छोटे से अंतराल का भी, लेकिन उससे पहले एंजॉय करेंगे एक प्यारा सा देशभक्ति गीत। इसी बात पे, इसी जुनून पे, इस जुनून को और बढ़ाने के लिए

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से हम वापस जुड़ चुके हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। आप सभी आज के इस बहुत ही प्यारे से सफर को एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें क्योंकि ये भी हमारी जिंदगी से जुड़ी हैं, लेकिन हाँ, कुछ खास बात की जो आज के कार्यक्रम की रहने वाली है कि लोगों को क्यों कुछ बातें इतनी बुरी लग जाती हैं कि वो अपनी जिंदगी का मोटिव ही भूल जाते हैं। उसी पे हम बात कर रहे हैं कि लोग सिर्फ हमारी कमियों पर ही ध्यान देते हैं, अच्छाइयों को भी देखते हैं, या अच्छाइयां देखने के बजाय उन्हें चुप जाती हैं। जरा सोचिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति मेहनत करके आगे बढ़ता है, जब कोई हमेशा मुस्कुराकर सबकी मदद करता है, जब कोई ईमानदारी से अपना काम करता है, तो क्या हर कोई उसकी तारीफ करता है? शायद नहीं। इस नहीं का जवाब आप सभी के पास है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों इस समाज में इस नजरिए को अहमियत दी जाती है। फिलहाल एंजॉय कीजिए इस प्यारे से खूबसूरत से गीत को, उसके बाद फिर से वापस आते हैं आप सभी के साथ।

जी दोस्तों, जिंदगी में हौसले अगर बुलंद हो तो फिर रास्ता मुश्किल नहीं, आसान हो जाता है। क्योंकि ज़िंदगी के रास्ते बहुत ही परेशानियों से भरे होते हैं, चुनौतियों से भरे होते हैं, और कदम कदम पे परीक्षाएं जो हैं हमारी वो चलती रहती हैं। तो उसी तरह से जो हम ये बात कर रहे थे अभी दोस्तों, जिस प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे, तो बच्चे बहुत सी मेहनत करते हैं, बहुत कई बच्चे ऐसे होते हैं ना पूरे जुनून के साथ, उन्हें ऐसा उन्होंने उम्मीद नहीं की होती है कि हाँ हम दोबारा इस एग्ज़ाम को दें या दोबारा से उसी जुनून के साथ हम पढ़ाई कर सकें। कई जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं जब इस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, कुछ अपना जो मानसिक संतुलन है वो खो बैठते हैं, न जाने किस तरह से, मतलब अलग अलग सिचुएशंस जो हैं वो बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं, जो बहुत ही लगन के साथ अपने इस पढ़ाई की फील्ड में आगे बढ़ रहे होते हैं और दिन रात उन्होंने मेहनत की होती है। तो सोचिए, जब उस मेहनत को एग्ज़ाम के बाद जब वो उसे एक बार फिर से देखते हैं, चेक करते हैं कि किस तरह से हमारी परफॉर्मेंस रही, और कुछ ही समय के बाद सुनने में आता है कि पेपर लीक हो गया और इसे कैंसिल कर दिया गया है, दोबारा से एग्जाम होगा, तो कुछ बच्चे तो अपनी हिम्मत को बना लेते हैं कि कोई बात नहीं, हम दोबारा से मेहनत कर लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे वहीं हार जाते हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो फिर से वो प्रेपरेशन उसी तरीके से कर पाएं, और दोबारा से एग्ज़ाम अगर अच्छा नहीं हुआ तब भी बच्चे पूरी तरह से टूट जाते हैं, उनकी उम्मीदें, उनके सपने सब बिखर जाते हैं। और जो परिवार इतनी मेहनत से, दिन रात मेहनत करके जो है उसका खर्च उठाते हैं, मतलब कोचिंग के लिए, पढ़ाई के लिए, क्योंकि आज के समय में दोस्तों पढ़ाई इतनी आसान भी नहीं है ना, बहुत महंगी महंगी जो है इंस्टीट्यूट में भेजते हैं बच्चों को, तो कहीं ना कहीं माँ बाप के सपने भी टूटते हैं बच्चों को देखकर। तो है तो ये बहुत बड़ी बात। खैर, देखते हैं, युवाओं ने इसी पे सवाल उठाए हैं और इसी का जवाब उन्हें शांतिपूर्ण चाहिए। शांतिपूर्ण जो है वो सवाल कर रहे हैं और काफ़ी समय से कर रहे हैं, भूखे प्यासे, है ना। अब तो कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने पानी तक छोड़ दिया है पीने, कि जब तक हमें जवाब नहीं मिलता हम पानी भी नहीं पियेंगे। तो इस तरह से बच्चे अपनी ज़िंदगी में, युवा जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और लोगों का समर्थन वो चाह रहे हैं, मांग रहे हैं कि सपोर्ट कीजिए और उनके साथ खड़े हो जाइए, कंधों से कंधे मिला के। और बहुत से लोग खड़े हैं उनके साथ, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो किसी भी तरह के लोग हों, हर एक चीज़ को भूल के, हर एक भेदभाव को भूल के वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो इसी तरह से ये जुनून हर एक नागरिक में हो

बेहद जरूरी है। उसे ही हम असल में इंसानियत कहते हैं। इंसानियत वो नहीं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम आपस में लड़ते हैं, भेदभाव करते हैं और पूरी जी जान लगा देते हैं कि किसी को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो दोस्तों, ये तो जिंदगी है, जिंदगी में बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं, खैर पार्ट है लाइफ का। तो ये हिम्मत हम में होनी बहुत ज़रूरी है। कितने भी लोग आ जाएं, कितने भी आपके मनोबल आपकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करें, आप अपनी जगह पे सही हैं तो आप इस राह पे आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

क्या लगता है दोस्तों, तो आप सभी को कि आज के समय में नेकी की राह पर चलना इतना आसान है? बहुत से लोग आपको बीच राह में रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सच्चाई की राह इतनी आसान नहीं है। कहने के लिए आसान है, लेकिन सच का साथ देना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिसने सच का साथ दे दिया, जो सच्चाई की राह पर चल पड़ा, उसने जिंदगी की सफलता की सीढ़ियां बहुत आसानी से चढ़ ली। और दोस्तों, हमेशा जिंदगी में खुद के सहारे आगे बढ़िए, ना कि किसी के सहारे जो है आप उन सीढ़ियों को चढ़े। और हम बात भी बहुत खास आज के कार्यक्रम में कर रहे हैं कि बहुत से लोगों में अगर कमियां होती हैं तो अच्छाइयां भी होती हैं। तो कुछ लोगों को कई बार कमियां चुभने लगती हैं, तो कई बार अच्छाइयां भी चुभने लग जाती हैं। कई बार लोग उनकी सफलता को देखकर कहते हैं, अरे इसमें क्या खास है, या ऐसा भी क्या खास है, देखना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, यानी कभी कभी हमारी जो ये छोटी छोटी सी कमियां नहीं, हमारा अच्छा होना भी लोगों को असहज कर देता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? दरअसल इंसान की तुलना करने की आदत बहुत पुरानी है। जब सामने वाला कुछ ऐसा कर जाता है जो हम नहीं कर पाए, तो दो रास्ते होते हैं। पहले उससे प्रेरणा लेना, और दूसरा उसे नीचे खींचने की कोशिश करना, उसे नीचे दबाना, नीचे गिराना। तो आप अक्सर किस रास्ते को चुनते हैं? दुर्भाग्य से कई लोग दूसरा ही रास्ता चुनते हैं, जो लोगों को नीचे दबाते हैं, नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जिंदगी भी बहुत कुछ सिखाती है और लोग भी बहुत कुछ सिखाते हैं। तो जो तजुर्बा होता है जिंदगी का, वो किसी की उम्र देखकर नहीं आता, वो जिंदगी के हालात, जिंदगी में जो समय आप फेस करते हैं, बस उसी से तजुर्बा हो या अनुभव हो, वो वहीं से आ जाते हैं। वो ये नहीं देखता कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन कितना एक्सपीरियंस्ड है ना, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। हालात और जो समय है वो इंसान को मजबूत बना देता है। इसी के साथ आइए दोस्तों जानते हैं एक बहुत ही खास जानकारी। जिला स्तरीय नागनी माता मेले का शुभ आरंभ शनिवार को श्रद्धा आस्था एवं पारंपरिक उत्साह के साथ हुआ। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज वैरवा ने भव्य शोभा यात्रा में भाग लेकर मेले का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र वासियों एवं श्रद्धालुओं को मेले की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेले हमारी समृद्ध लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जी दोस्तों, तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी के लिए, आप सभी तक पहुंचाई गई रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। और इसी के साथ एक और आपको बता दूं, वैजनाथ शिव मंदिर में कल से शुरू होंगे सावन मेले, यानी कि 20 जुलाई से। तो वहां भी आप जा सकते हैं दर्शन करने शिव भगवान जी के। जो शिव के भक्त है, जो नहीं भी हैं, वो भी जरूर अपने मन को थोड़ा शांत कर सकते हैं, श्रद्धा में लगा सकते हैं। जो कहते हैं ना कि गलत विचार मन में चलते हैं, बहुत सारी बातें जो दूसरों को परेशान करने के लिए चलती, शायद वो थोड़ी कम हो जाएं, शांति मिल जाए और एक सही राह पर उन्हें चलने का मार्ग मिल जाए। तो आइए इसी के साथ दोस्तों एंजॉय करते हैं कार्यक्रम में एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

बिल्कुल दोस्तों, समय का पहिया है और कब बदल जाए, कब करवट ले ले, पता नहीं चलता। जिस तरह से मौसम का पता नहीं चलता है, कब बारिश तो कब धूप खिल जाए, तो उसी तरह से आज का इंसान भी है। दो चेहरे लेकर जो है वो हम इस दुनिया में घूमते रहते हैं। खैर दोस्तों, इसी के साथ समय है एक छोटे से अंतराल का, तो मिलते हैं आप सभी के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी इसी तरह से एंजॉय कीजिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। दोस्तों सही कहा जाता है कि सूरज को अंधेरा नहीं हराता, लेकिन कुछ लोगों की आंखें उसकी रोशनी सह नहीं पाती। एक छोटी सी कहानी। एक बार दो दीपक जल रहे थे, एक छोटा था तो दूसरा बड़ा। छोटे दीपक ने कहा, लोग तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों करते हैं? तब बड़े दीपक ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं इसलिए बड़ा नहीं हूं कि तुम छोटे हो, मैं इसलिए बड़ा हूं क्योंकि मैं जितना हो सके उतना प्रकाश देने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, दूसरों की रोशनी कम करने से बेहतर हमारा अंधेरा कभी दूर नहीं होता। मतलब दूसरों को कम दिखाने से हमारी अपनी जो कमियां हैं वो कभी दूर नहीं होंगी। हमें खुद की कमियों को दूर करने के लिए खुद पे काम करना जरूरी है, या तो ये कह सकते हैं कि उन्हें खुद पे इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो कुछ बेहतर कर सकते हैं, ऐसा ही हो सकता है। खैर, अपनी जगह पे हर कोई बेहतर होता है, अपनी बस उस पहचान को हमें बाहर निखारना होता है, खुद पे विश्वास जताना होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, बस दूसरों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, दूसरों को दबाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। तो जो कोई अगर आपको एक साथ ऐसा कर भी रहा है तो जरूरी नहीं है उनको उनकी भाषा में जवाब दिया जाए, क्योंकि वो अगर उस लेवल तक जा रहे हैं तो हमें जरूरत नहीं है उस लेवल तक पहुंचने की। हम सच्चाई, ईमानदारी और सही राह के माध्यम से ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें तो शायद बेहतर है। बाकी जो होगा सो होगा, वो किसने देखा, कल क्या होगा वो कोई नहीं जानता, कल हमारे हिस्से में है भी हम ये भी नहीं जानते, तो क्यों उस कल की चिंता में आज को गंवाएं। तो आज खुलकर जियो, एंजॉय करो। फिलहाल इसी के साथ एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा ये मोटिवेशनल सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया, और ये मोटिवेशन हर किसी के ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी है। जो आज का दौर, जो आज का समय चल रहा है, और ऐसे में हमें खुद को प्रेरित करना, खुद को मोटिवेट करना कितना ज़रूरी है, ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। और आज के कार्यक्रम में हम बहुत खास बात भी कर रहे हैं। जी दोस्तों, आप सभी से एक सवाल जो है वो रहेगा दोस्तों, कि खैर खुद से आप ये सवाल कीजिएगा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की मदद की लेकिन उसी व्यक्ति ने आपकी आलोचना कर दी, या फिर आपकी सफलता पर खुश होने के बजाय किसी ने ताने दिए हों? अगर हाँ, तो याद रखिए दोस्तों, समस्या जो है वो हमेशा आपकी नहीं होती, कई बार समस्या सामने वाले की सोच होती है। हमारा जो ये सोच का तरीका है ना, हमारी जो ये मानसिक सोच है, ये हमें कहां से कहां पहुंचा देती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, दूसरों की जलन आपके चरित्र का प्रमाण नहीं, उनके मन की अशांति का प्रमाण है। और स्वामी विवेकानंद का एक विचार है, यदि लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो संभव है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शायद सबसे अलग है। और हर किसी की एक जो है वो अलग बात होती है, हुनर होता है, टैलेंट होता है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जहाँ हुनर होता है जहाँ वहाँ बातें भी होती हैं। लोग जीने नहीं देते, चाहे आप अच्छा करो चाहे आप बुरा करो, लोग सुनाते ही हैं। कोई बात नहीं, उन्हें सुनाने दीजिए, बोलने दीजिए, आप अपनी राह पे आगे की ओर बढ़ते जाइए। जिस तरह से हम इस समय कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम में एक और प्यारा सा गीत।

जी दोस्तों, पूरे देश में माहौल ही ऐसा है कि बस देशभक्ति गीत सुनने का ही मन जो है वो सभी पे सवार है। तो दोस्तों, ये जुनून, ये हिम्मत हमें जिंदगी के संघर्षों को लड़ने के लिए प्रेरित करती है, हमारी जिंदगी में ये एहसास करने के लिए कि हमारी जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं उससे बड़ा भी कुछ है। अगर करके दिखाना है देश के लिए कुछ, तो वाकई में करके दिखाइए ना। सिर्फ दिखावे से जिंदगी नहीं चलती, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अगर हम कुछ कर लें, कुछ पुण्य कर लें, तो उससे कुछ नहीं होगा। मन से, अपनी अंतरात्मा से पूछकर देखिए कि आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं, तभी आपके मन को सुकून मिल सकेगा, वो शांति।

हर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये सफर आप सभी एंजॉय करते हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम के साथ। दोस्तों एक बहुत ही खास बात, एक सावधानी हमारी जिंदगी में बेहद जरूरी है जो कि आज के कार्यक्रम में हमने बात की। हर आलोचना गलत नहीं होती, अगर कोई हमारी गलती बताता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है हम सभी के लिए। अगर कोई सिर्फ इसलिए आलोचना कर रहा है क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस आलोचना को अपने आत्मविश्वास पर हावी नहीं होने देना है। दोस्तों पेड़ जब फल देता है तभी उस पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं, खाली पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता। इसलिए अगर आपकी अच्छाइयों से किसी को परेशानी हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छाई छोड़ दी जाए, बल्कि और विनम्र बनिए और बेहतर बनिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि अच्छाई का सबसे बड़ा उत्तर अच्छाई ही होती है। तो आज का ये बहुत ही प्यारा सा सफर जो है, बहुत ही खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी ने एंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, तो समय हो गया है अब धीरे धीरे जो है बढ़ता जा रहा है आप सभी से अलविदा लेने की ओर। तो फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए।
2: लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
2: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आंख में बेटियों को बलि मत चढ़ाना। औरत की आंख बांस शान में हमारी बेटियों का योगदान।

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो
2: अरे भूल गए भूल गए भूल गए अरे भूल गए भूल गए भूल गए।
1: चुप यार, पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कर।

0: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: ले जाएगा ना तुम्हें पिक्चर? चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी? ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो।
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: अरे ले आओ यार नाश्ता।
0: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
6: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
0: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
5: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
0: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
6: अबे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
0: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या?
7: हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। आओ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए।
2: लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
2: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आस में बेटियों को बलि मत चढ़ाना। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का योगदान।

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
2: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
1: चुप यार, पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार

क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी

0: आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो।
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: अरे ले आओ यार नाश्ता।
5: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं, एक इंसान क्या क्या करेगा।
6: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
5: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
7: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
5: भाई मैं अभी ना गई हूं, मैं नहीं जा रही।
6: अबे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
5: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या?
8: हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं ना नाश्ता बना लेती हूँ। आओ।

सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, और इस हफ्ते भी हर हफ्ते की तरह हम एक बड़ा ही नायाब एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं, और हमें बेहद खुशी है कि आपको हमारे ये एपिसोड्स बहुत पसंद आ रहे हैं। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे बड़े ही अनोखे गायक, बड़े जाने माने फनकार कुमार शानू के बारे में। भाई कुमार शानू साहब का नाम कुमार शानू कैसे पड़ा ये तो मैं आपके साथ बांटूंगा ही, और साथ ही शानू दा के बड़े ही अनोखे गाने भी आप सुनेंगे, और इनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बड़ी अनोखी दास्तानें आपके साथ बांटूंगा सिर्फ सारे गवा वीकेंड क्लासिक पर। और अभी 1942 लव स्टोरी से रूठ ना जाना तुमसे कहूँ तो, ऑन सारे गवा वीकेंड क्लासिक।

वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। और इस हफ्ते इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कुमार शानू की। जी हाँ, शानू दा के नाम से हम इन्हें जानते हैं। 20 अक्टूबर सन 1957 में इनका जन्म हुआ, लेकिन इनका नाम कुमार शानू कैसे पड़ा, इनका असली नाम क्या है, जरा ये दास्तां आपके साथ बांटता हूँ। देखिए, ये एक बड़े ही संगीतमय परिवार से ताल्लुक रखते हैं और इनका नाम दरअसल रहा केदारनाथ भट्टाचार्य। जी, केदारनाथ भट्टाचार्य इनका नाम रहा, लेकिन जैसे कि हर परिवार में होता है और चाहने वाले जो हैं एक अलग नाम रख देते हैं, तो इनका नाम रखा गया कुमार शानू। और कोई नहीं जानता था कि आगे जाकर ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा देंगे। जी हाँ, एक ही दिन में 28 गाने एक साथ ये रिकॉर्ड कर पाएंगे। ये हुआ था सन 1993 में। तो केदारनाथ भट्टाचार्य यानी कि कुमार शानू की जिंदगी से जुड़ी और भी कुछ बड़ी अनोखी दास्तानें आपके साथ जरूर बांटी जाएंगी, लेकिन अभी कहो ना प्यार है से ये जरा गाना हम सुनते हैं सिर्फ सारेगामा वीकेंड क्लासिक।

वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप और कुमार शानू स्पेशल आप सुन रहे हैं। शानू दा के बड़े ही अनोखे गाने आपके सामने मैं जरूर पेश कर रहा हूं, लेकिन साथ ही इनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ बड़ी अनोखी कहानियां भी आपके साथ बांट रहा हूं। देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि इनका नाम रहा केदारनाथ भट्टाचार्य, लेकिन ये बात कम लोग जानते हैं कि इनके वालिद साहब यानी कि इनके पिताजी पशुपति भट्टाचार्य

खुद एक बड़े अच्छे गायक और बड़े ही ज़बरदस्त म्यूज़िक डायरेक्टर रहे, और शानुदा के साथ इनकी बड़ी बहन को भी इन्होंने ट्रेनिंग दी और दमदम इलाके में रहा करते थे कोलकाता के। हाँ, और वहाँ पे जो है शानुदा ने अपने पिता से संगीत की विधिवत जिसे कहते हैं कि भाई शिक्षा ली, और उसके बाद इन्हें लगा कि भाई मैं गायक तो बन गया हूँ और पिताजी ने तबला भी सिखाया है। जी हाँ, ये बतौर तबला प्लेयर पहले सामने आए थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने कॉमर्स की डिग्री ली। लंबा अरसा लगा शानुदा को शानुदा बनने में, और फिर स्टेज पे परफॉर्मेंसेस शुरू कर दी सन 1979 में। और ये भी बात हम लोग जानते हैं कि ये कई रेस्टोरेंट्स में भी गाया करते थे कलकत्ता के, और तब तक किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि आगे जाकर ये लड़का लिविंग लेजेंड बन जाएगा। जी, इस तरह से कुमार हमारे कुमार शानू की जो है शुरुआत हुई, और फिर तो इतिहास रच दिया। ऐसी और भी बड़ी अनोखी दास्तानें शानुदा की ज़िंदगी से जुड़ी आपके साथ बांटी जाएंगी, और अभी एक बेहतरीन गाना जो है मैं चाहता हूँ पहले इसे सुने, फिर आगे की दास्तान सिर्फ वीकेंड क्लासिक पर।

वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं और कुमार सानू स्पेशल आप सुन रहे हैं। शानू दा की जिंदगी से जुड़ी कुछ बेहतरीन दास्तानें आपके साथ बांट रहा हूं और साथ ही कुमार शानू के बड़े अनोखे गाने आप सुन रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि इनका नाम तो बड़ा अच्छा रखा, इनके पिताजी पशुपति भट्टाचार्य ने केदारनाथ भट्टाचार्य। अब केदारनाथ भट्टाचार्य से कुमार शानू किस तरह से बने, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। हुआ दरअसल यूं कि जब इन्होंने मुंबई की तरफ रुख किया और महान गज़ल गायक जगजीत सिंह साहब ने इनका तारुफ करवाया संगीतकार जोड़ी, महान संगीतकार जोड़ी यूं कहूं, कल्याण जी आनंद जी से, तब आनंद जी भाई को लगा कि यार ये जो है लड़का, इसका जो गाने का अंदाज़ है बड़ा किशोर कुमार से मिलता है। तो इन्हें कहा गया कि भाई अपना नाम केदारनाथ से ज़रा तुम कुछ और रख लो, और इनका नाम तब रखा गया कुमार शानू। कोई नहीं जानता था कि कुमार शानू का नाम जो है दुनिया में सूर्य की तरह चमकेगा। इस तरह से केदारनाथ भट्टाचार्य से ये बने कुमार शानू। लेकिन ये बात हैरान करेगी आपको कि वो कौन सी फिल्म थी जिसके साथ इन्होंने बतौर प्लेबैक सिंगर शुरुआत की, वो भी कहानी आपके साथ जरूर बांटी जाएगी, वो फिल्मी में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले शानू दा की मधुर आवाज़ में ये गाना सिर्फ सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर।

तो वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप और कुमार शानू स्पेशल सुन रहे हैं। शानूदा की जिंदगी से जुड़ी कुछ बेहतरीन दास्तानें आपके साथ बांटी जा रही हैं, तो जरा इस तरफ रुख करें जहां पता चलता है कि शानूदा ने सन 1986 में बतौर प्लेबैक सिंगर शुरुआत की। इनकी वो फिल्म रही तीन कन्या, जो कि एक बांग्लादेशी फिल्म थी, और उसके बाद महान सिंगर और महान कंपोजर जगजीत सिंह साहब ने इनसे कहा कि भाई तुम्हारी आवाज़ बेहतरीन है, क्यों नहीं तुम मेरी फिल्म आंधियां के लिए गाना गाते। 1990 में ये फिल्म रिलीज हुई और फिर इनका नाम केदारनाथ भट्टाचार्य से हो गया कुमार शानू। ये दास्तां तो मैंने आपके साथ बांटी है, लेकिन 1990 में एक आई फिल्म आशिकी, जिसके बाद कुमार शानू ने पलट के नहीं देखा। नदीम श्रवण साहब ने उसको संगीत दिया था और फिर तो इतिहास रच दिया गया जी। ये कमाल रहता है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, हर किरदार पे लिखा है निभाने वाले का नाम, और हर गाने पे लिखा है गाने वाले का नाम। शानूदा ने इतिहास रचे, इनके फैन क्लब्स बने, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, और आज की तारीख में हम इन्हें लिविंग लेजेंड कहते हैं। क्यों ना कहें साहब, इनकी आवाज़ ही बड़ी अनोखी है और अनोखी रहेगी। ये सारी दास्तानें आज आपके साथ बांटी हैं, और अगले हफ्ते कुछ और बड़ी अनोखी कहानियां आपके साथ बांटी जाएंगी। ये सब आप तक पहुंचेगा सिर्फ वीकेंड क्लासिक पर।

संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, माकपा नेता जॉन ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा सहित विपक्ष के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो गए। मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मॉल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मॉल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मॉल्दोवा व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसिडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में संयुक्त गणराज्य तंजानिया के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविनी से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों ही नेताओं ने उच्च शिक्षा, क्षमता निर्माण, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, AI, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भारत तंजानिया सहयोग के विस्तार पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज सुबह बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित बाढ़ का पानी निचले इलाकों में भर गया। इस वजह से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैल गई। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए।
2: लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
2: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आस में बेटियों को बलि मत चढ़ाना। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का योगदान

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो, वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो
2: अरे भूल गए भूल गए भूल गए अरे भूल गए भूल गए भूल गए।
1: चुप यार। पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई

0: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: ले जाएगा ना तुम्हें पिक्चर? चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो।
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: अरे ले आओ यार नाश्ता।
0: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
5: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
0: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
1: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
0: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
5: अबे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
0: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या?
6: हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं ना नाश्ता बना लेती हूँ। आओ।

नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समां हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

करती हूँ रेडियो कुंचन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो 91.2 MHz ते पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो। तां मैं हां तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। तां मेरे नाल तुसी सुन रहे हो ये प्रोग्राम। तां आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा अगला पंजाबी गीत।

0: श्रोतियो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।
1: Listen up. Yeah.

श्रोतियों रेडियो कुंजन धर्मशाला के नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहनी सोहनी पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ते मैं थोड़ी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदा ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम एंजॉय करते रहो पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो कुंजन धर्मशाला तू सारे श्रोते एंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपने रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल तहे खोर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

यह रेडियो कुंचन धर्मशाला 91.2 MHz इस वक्त तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दा होर पंजाबी गीत।

श्रोताओ, रेडियो कंचन धर्मशाला है ते तुसी 91.2 मेगाहर्ट्ज ते बने होए हो। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। उम्मीद है पंजाबी गीतां दे इस प्रोग्राम च तुसी काफी इंजॉय कर रहे हो। तां हुण पेश कर रहे हां प्रोग्राम दा आखरी पंजाबी गीत।

रेडियो कुंजन धर्मशाला के नाल 91.2 MHz से मैं हाँ थोड़ी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते श्रोतियों हुण साडा ये सफर इत्थे खत्म हुंदा है। सानू दिओ इजाजत, धन्यवाद। तुसी

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए।
2: लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
2: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आंख में बेटियों को बलि मत चढ़ाना। औरत की आंख बांस शान में हमारी बेटियों का योगदान है।

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो
2: अरे भूल गए भूल गए भूल गए अरे भूल गए भूल गए भूल गए।
1: चुप यार। पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार।

0: आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां, तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया,
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
1: डॉक्टर।
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: अरे ले आओ यार नाश्ता।
0: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
5: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
0: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
1: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
0: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
5: अबे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
0: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या?
6: हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। आओ।

0: नमस्ते नमस्कार, 92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। कनेसी कन्ने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ी होने न सफर दा इंतजार तो हाँ जो रहन दे कन्ने इसी सफर दा हाँ जो भी इंतजार रहन दे जितना कि तुहों जो इंतजार रहता है उतना ही अहाँ जो भी इंतजार रहता है कि कलू ती अहाँ अपने श्रोता कन्ने रूबरू आते हैं कन्ने जिहड़ा अहाँ दे श्रोता न से अहाँ कन्ने रूबरू आते हैं तो जरूर मिलने की आस जिहड़ी से तुहों जो भी आती माइक दे जरिए या फेसबुक लाइव भी तो दिखते हैं तिदे जरिए भी तो अहाँ की जिहड़ा गलबात है से सुनी सकते कन्ने पहले जेड़ा श्रोता न सभी अहाँ कन्ने जुड़ चुके न तो जरूर तिना कन्ने भी अहाँ करनी है गलबात से कुथु दे रहने वाले न कन्ने तिना दा ना क्या है क्योंकि शुरुआत च जेड़ा श्रोता न से इंतजार करते रहते न कि कलू दिया 2 बजते न कन्ने कलू दिया अहाँ इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ते न तो जरूर जेड़ा पहली श्रोता है ना तिना कन्ने अहाँ करनी है गलबात तो सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़ी सकते कन्ने अहाँ कन्ने गलबात जेड़ा से जरूर करी सकते तो कर दे न गलबात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्कार सती, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: धन्यवाद।
0: जी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तो हाँ कुतु ते बोला दे कने तो हाँ दा ना क्या है जी?
1: हाँ दागी ते बोला दे कने मेघनाथ ना है
0: जी। ता मेघनाथ जी क्या हाल चाल है इन दाढ़ी वाले इन दे?
1: बढ़िया, 2 दिन हो गए बरखा बुरखा हो रही तो आड़े पर है हो रही
0: जी। बिल्कुल जी, बरखा था ठीक ठाक हो दी ना जी?
1: बढ़िया हो रही ना
0: जी। जी जेड़ा ली कई जगह ऊर नहीं लगाया था ना जी, कहीं बरखा वजह ने ऊ नहीं लगाया था तो सभी उरे लगा दे ना जी।
1: लगा दे
0: जी जी, इस बार ये बड़ा ज्यादा लेट हुई है ना जी।
1: लेट है
0: जी जी जी। और नोई ताजी दाढ़ी दी
1: सोमवार लगी कौन है
0: जी जी? तुम्हारी आवाज बड़ी कट्टी कट्टी की होती जी।
1: क्या बोल
0: जी?
1: हेलो
0: हेलो हाँ जी, उन ठीक हो दी जी आवाज़ तो हंदी
1: ठीक है ना? सोमवार लगी कौन है?
0: जी जी जी जी, इसी कन्ने गुप्त नवरात्रि भी लग गए ना जी।
1: मेले रोड मेले पर भी आ ना
0: जी जी जी। ता मेघनाथ जी, आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: उच्चिया पिपला पिंगा पाइया
0: जी। उच्चिया पिपला पिंगा पाइया ना जी?
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी
1: सर। पिंगा लगे ना और पिंगा टूट
0: जी जी जी जरूर है गीत तो तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो दा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। दर्शकों तो हाँ सारे जो ही लेकर चलते न गीत दी और शुरुआत कर दे न अपने कार्यक्रम दा इस प्यारे दे गीत कन्ने तो हाँ सारे भी इस गीत जो इंजॉय करा।

0: अहमुलादीन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तुहा सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। इसी कन्ने तुहा सारे सुनिया ए प्यारा देया गीत कने इसी गीत कन्ने हाँ फिरी ते वापिस आई ना अपनी गलबात उपर। तो आज कनी जेड़ा खास गलबात क्या रहने आ रही है कहो ना आज हाँ अपने बचपन दे दौर जो थोड़ा दिया याद करिए या संडे दी जेड़ा छुट्टी है या छुट्टी आए दिन नान से कुथी ना कुथी आहन जो क्या क्या सिखाई करी जान देन। संडे दी छुट्टी आहन जो अपनिया पुरानिया यादा न तिना जो आहां ताज़ा कर देन या कोई मस्ती भरे पल आन तिना जो भी आहां ज़रूर याद कर देन। कनेसी कन्ने आहां दे अगले जेड़ा श्रोता न सभी यहाँ कन्ने जुड़ चुके हो न कन्ने तो हाँ फेसबुक लाइव भी दिखा दे होने न तो ज़रूर तो हाँ जो भी शशि दा प्यार भरा स्वागत है। इसी कन्ने कर दे न गल बात। हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तो हाँ दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न।
1: हांजी बढ़िया ठीक जी।
0: जी तो हाँ कुछ ते बोला दे कन्ने तो हाँ दा ना क्या है जी।
1: मैं यो जो टीका बनी ते बोला प्रकाशी मेरा ना
0: जी प्रकाश।
1: हाँ जी
0: जी ता प्रकाश जी क्या काम कार तुहां लगया क्या करा दे।
1: बस क्या करना मैं कर रहा दुकान नडू बैठ के तू बैठे है।
0: जी ता निके दे दुकान नडू दी क्या स्टोरी है क्योंकि हर कुसी दी अपने अपने सपने होंदे ना जी।
1: क्या करना मैडम जी हुणे थोड़ा थोड़ा
0: ज्यादातर मोबाइल फोन च बिजी है न
1: या जी बड़े भारी
0: जी तो सही
1: बड़े भारी बिजी मारे बड़े भारी था।
0: जी जी तो तुहां अपने
1: पोतरु पोतरियां छड़ियां मोबाइल ले।
0: जी जी तो तुहां अपने दौर जो याद कर दे न कने उणे वाला जेड़ा दौर है तो क्या तुहां जो फर्क लगदा
1: तो बुरा वक्त आउणा जे नहीं आला ते बच्चे ही आखी खराब हो जाना।
0: जी
1: ओ बुरा हाल है।
0: जी जी
1: हां
0: जी ता आज तुहां कुंदिया गीत सुनना पसंद करके जी।
1: ए गीत मैं सुनना जी सर क्या बोलदे चुगलियां लगांदे लोग।
0: जी चुगलियां लगांदे लोग। जी
1: जी हां जी हां जी
0: जी जरूर है गी ते फरमाइश तो तक पहुंचा दें जी चुनने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हुंदा।
1: अच्छा बहुत धन्यवाद जी तुम्हारा भी।
0: जी तशो तो इसी कन्या हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो आगे बढ़ाते न कने तो हाँ जो लेकर चलते न अगली फरमाइश दी और सुनते नहीं सब प्यारी दिया फरमाइशा जो

ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे सुनिया ये प्यारा दे या गीत प्यारी दी फरमाइश। ये फरमाइश आ जो आई हुए दाढ़ी ते कने तिना था नावे मेघनाथ जी। मेघनाथ जी तक कहाँ आएगी ते फरमाइश पहुँचाई कने तो हाँ।

0: कानवी देशपिलव 2 MHz पर ये तुहा सार यंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहा सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने समय दे अनुसार चलिए ता 2:29 कार्यक्रम दे सफर च होई अन कने इसी कन्ने अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने कर देन गल बात। हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद
0: जी।
1: और शशि जी क्या हाल है ना?
0: जी ठीक ठाक हैं जी। तो कुथु दे रहने वाले ने कने तुहांदा ना किया जी?
1: तपोवन ते रहने वाले जी, ते दो ना
0: जी। तपोवन दे रहने वाले सेतु जी।
1: हां जी हां जी
0: जी। ता सेतु जी, आज तुहां क्या काम कार छेड़िया कदिया की अजकना जेड़ा दिन
1: ना से चले? काम कार का आंदा रोजे रे ये जी, जेड़ा बकरियां कने गाय गोई चराणी जंगले ते
0: जी। ता आज फिर जंगले ची है ना?
1: हां जी हां जी
0: जी। ता मौसम कदे है?
1: मौसम ता पहले बरखा ही होना चाहती है, जेड़ा बरखा
0: जी। हुन बड़ा प्यारा मौसम बनी आणा ना जी।
1: हां जी हां जी, ये बरखा हो ये बढ़िया हुई है
0: जी। बरखा ता ठीक ठाक हुई है ना जी? थोड़ा दिया खोई आंदे ना जी, हर किसी दी अपनी अपनी याद हुंदी ना जी। ता तुहां तुहां दी क्या जेड़ा बचपने दिया यादा न तिना जो तुहां सांझा करना चाहेंगे?
1: सांझा क्या करनी है सची
0: जी?
1: बचपन कमे बीते था
0: जी। अच्छा, स्ट्रगल बड़ा किता तो हाँ अपने जीवन च ना जी?
1: हाँ जी, क्योंकि 6 साल का बच्चा स्कूल जाता है तो 5 साल की मजदूरी लगी
0: जी जी। ता बड़ा ही ज्यादा स्ट्रगल किता तो हाँ अपनी जिंदगी।
1: हाँ जी, बड़ा जवाना जी। तलो 4 आने दिहाड़ी मिलती, 4 आने
0: जी, 4 आने।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: पर उस 4 आने
1: पैसे दे
0: जी।
1: कुछ
0: सिख्या भी कि किस प्रकार आगे बढ़ना है या जिम्मेदारियां का पैरा सिरे पर पे या, क्योंकि जलू जिम्मेदारियां सिरे पर पे आंदी है तलू हाँ कुछ ना कुछ यही सोच दे कि नहीं अपनी फैमिली वास्ते कुछ करना है या खुद वास्ते कुछ करना है, क्योंकि जिम्मेदारियां जेड़ा ना से बड़ा कुछ सिखाई करी जानी है ना जी।
1: हां जी, माता को तो सिखाई सिखी ले रही है।
0: जी जी, जिंदगी का पूरा जी जी जी जी। ताज तो हम कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: गाना है का पता नहीं बाड़ी है कि ये हिंदी गाना है ना
0: जी,
1: वो है गोरा ने जगाया बंदा फेर सो गया उठ जा बंदे आ सवेर हो गया
0: जी। पहाड़ी होना है ना जी भजन?
1: हां जी, जर ये होगा पहाड़ी का सुनाई नहीं था
0: जी। जरूर तो हां तक की भजन पहुंचा दें जी। जुने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हां दा।
1: हां जी
0: जी, तशु तो दो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कहने ता। जरूर बचपन दा दौर कुछ खास है, कुछ स्ट्रगल करते न, कुछ मौज मस्ती करते न, या कुछ अपनी लाइफ जो इंजॉय करते न। तो इसी करने लाइफ जो भी इंजॉय करना है, स्ट्रगल भी करना है, क्योंकि जिंदगी दा नाव है अगर हाँ हमेशा मेहनत करते न। मेहनत हर जगह लगती है, पर से यहाँ पर निर्भर करता है कि यहाँ मेहनत करते न या मौज मस्ती करते न। तो इसी करने तो जो अगली फरमाइश थी लेकर चलते न, सुनते नहीं सा प्यारी दिया फरमाइशा जो गीत बड़ा प्यारा है। जरूर तुह इस गीत जो भी इंजॉय करा कने तुह सारे भी इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

कानून दशमलव तो मेगा हर्ट्स पर ए तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला फिर ते वापिस अहा आई हो ना अपनी गूंज कन्ने तुहा तक जेड़ा प्यारी प्यारी गूंज है सभी जरूर तुहा तक पहुँचानी है क्योंकि अहां दी जेड़ा आवाज़ है सभी तुहा तक पुजना जरूरी है कन्ने जेड़ा गीत संगीत की आवाज़ है या तुहनिया जेड़ा फरमाइशां सभी जरूर अहां तुहा तक पहुँचाते हैं कन्ने तुहां सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर जहां कन्ने जुड़ी सकते कन्ने एक गीत अहां जो इस गीते दी फरमाइश आई हुए प्रकाश जी दी तो जरूर तिना तक अहां एक गीत पहुंचे या कन्ने तुहां सारियां भी इंजॉय कीता इसी कन्ने आगे बढ़ते न कन्ने अगली जेड़ा फरमाइश है सभी जरूर तुहां तक पहुंचांदे न।

0: ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश। इस गीते दी फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तो जरूर तिना तक कहाँ ये गीत पहुँचाया ये फरमाइश पहुँचाई कने अगले जेड़ा श्रोता न सभी यहाँ कन्ने जुड़ चुके हैं न कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो,
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना
1: धन्यवाद मैडम जी। ठीक ठाक मैडम जी, तुसा सारी ठीक ठाक मैडम जी।
0: जी? बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तुहां कुत्थों ते बोला दे कने तुहांदा नां की है जी?
1: सुनील कुमार बोले मैडम जी, कोठी जरूरते।
0: जी सुनील जी। जी ता

0: जी मैडम जी,
1: सुनील जी, क्या हाल चाल हैं? कोठियां जलोट आलियां दी?
0: बस बढ़िया मैडम जी, ठीक ठाक न मैडम जी। राती ये बरखा हुई याद ही प्यागा दे
1: जी
0: करे दिन, मतलब निम्बल हुई याद। हाँ
1: जी जी
0: जी मैडम जी,
1: जी ता मौसम इस टाइम कदे है जी कोठियां जलोट दा?
0: बदली है मैडम जी इस टाइम पर, संजय होना आई जाना इन्नी पता नहीं लगा कुछ बारी नेर हो याद है मैडम जी।
1: जी जी बरसात दा मौसम है ना जी?
0: हाँ जी मैडम जी,
1: जी तो थोड़ा जहा बरसात दे मौसम च अपना ख्याल भी ज़्यादा रखने की ज़रूरत होंगी ना जी?
0: हाँ जी हाँ जी मैडम जी,
1: छोटी छोटी गल्लां
0: हाँ
1: दा जिहड़ा ध्यान है से रखने की ज़रूरत है ना जी?
0: जी हाँ जी मैडम जी। बाकी तो गलबात लाई है बचपन दी मैडम जी।
1: जी जी ज़रूर जी, तो हाँ जो भी अपना बचपन ज़रूर याद आई होना फिरी ना जी?
0: हाँ जी मैडम जी, हेलो
1: जी जी तो
0: बचपन था मैडम जी, छोटे छोटे जी
1: जी
0: बीजा दिन भी पता नहीं महीने बाद लेना मैडम जी, खुश खुशियां ने चली जाना मैडम जी, कोई
1: जी
0: अड़ी उड़ी नहीं करनी मैडम जी।
1: जी
0: कहने दूजी गल क्या, पहले टाइम में आते ही मैडम जी, आते टाइम में छोटे छोटे इधर बिन्ने आते ही, क्या
1: जी
0: बोलते पोचा दे बिन्ने,
1: जी जी
0: कहने फिर लफाफिया दे रंग बिरंगे लफाफिया दे, फिर
1: जी
0: बोंकरियां होनिया गाई दियां है भी हूँ मैडम जी, लुप्त तो हुई
1: जी से तो बिल्कुल ये चीज़ें तो लुप्त ही
0: लुप्ति
1: होनी चलिया ना
0: लुप्ति
1: जी?
0: हुई पंधी होनी मैडम जी, अभी
1: जी
0: लुप्त हुई।
1: पंदी
0: हाँ
1: जी
0: जी हाँ जी मैडम जी,
1: जी उस साइड तो वैसे भी जेड़ा बोंकरियां जूड़ियां दी गल कीती तो हाँ है तो हुंदी
0: हाँ
1: आली
0: जी
1: साइड तो
0: उत्थ तो,
1: ज्यादा होनी
0: हाँ
1: है।
0: जी ये बहुत करीब ये गल
1: जी
0: है मैडम जी, एक
1: जी
0: एक
1: जी जी
0: ऐ बोलते ना एक एक ताल ना बोलती है
1: जी
0: मैडम।
1: जी एक एक तीज जो बनाने वास्ते बड़ी मेहनत लगती ना
0: हाँ
1: जी?
0: जी हाँ जी, कहने खजूरी तो खजूरी
1: खजूर
0: बाबा बड़ो साइड बड़ी भारी मैडम जी।
1: जी बाबा बड़ो साइड ज्यादा है
0: हाँ जी हाँ जी,
1: खजूर
0: तो बड़ी भारी में क्योंकि लोग बड़े भारी
1: जी
0: लेंगे मैडम जी, गड़े गड्डिया भारी भारी के। हाँ
1: जी जी
0: जी हाँ जी मैडम जी, सभी कम में होनी है जूड़िया दे।
1: जी
0: हाँ जी हाँ जी मैडम जी,
1: जी पर ये चीज़ा सब कुछ लुप्त हो दी है ना जी?
0: लुप्त तो हुई हूँ मैडम जी, है दुआ चली गई ना है बाजार ही बुम करी है
1: हुन तो
0: चाल
1: हर
0: दे।
1: चीज़ कोई भी काम है कुछ भी है हाँ कोई भी करे फंक्शन करवा देना ताहे पता है कि बाजारे च मिली आने है ना जी? पहले
0: हाँ जी
1: तो
0: हाँ जी
1: हर
0: मैडम,
1: चीज़ अपनी इकट्ठा करते थे ना जी, घरे
0: हाँ
1: दी
0: जी हाँ जी
1: सोच ही
0: मैडम,
1: जहाँ जो मिली आंदी थी
0: मिली जाती है मैडम जी। पहले ब्याह कार्ज
1: जी
0: होने मैडम जी, तो
1: जी
0: पहले है लुखवाने हैं दरवाजे से
1: जी
0: मैडम जी, हूँ तो बाजार ही मिली जाती ऑटोमेटिक है। हाँ
1: जी जी
0: जी हाँ जी मैडम जी,
1: जी आजकल तो हर चीज़ रेडीमेड है ना जी, रेडीमेड पर
0: हाँ जी
1: निर्भर हुई हो हाँ
0: निर्भर है मैडम जी, पर पहले का
1: खुद
0: टाइम बिल्कुल सही था मैडम, बेशक पैसा नहीं था मैडम,
1: जी,
0: बिल्कुल दिन अच्छे थे
1: पर
0: मैडम जी
1: प्यार
0: आपके,
1: भावना
0: बिल्कुल
1: थी ना कि दुवे अंदर
0: अच्छी थी मैडम जी।
1: समझ थी,
0: हाँ जी हाँ जी
1: मतलब
0: समझ थी,
1: हर इंसान दी जेड़ा सोच है से इक्की इंसान जो समझदा था अगला व्यक्ति जेड़ा वो जो समझदा था ना जी,
0: समझती थी
1: पर
0: मैडम, सही गल है,
1: आजकने
0: बेशक
1: जी
0: बेशक पैसा नहीं था मैडम जी,
1: जी
0: बेशक कपड़े में नहीं होते थे मैडम
1: जी
0: जी तालू टाइम में,
1: जी
0: मतलब
1: जी
0: होता था मतलब बोलते फटे हूं मैं
1: जी
0: जिया मम्मी मतलब मम्मी ने पूछ रही डैडी जिया दादा जी
1: जी
0: बुलाते, तो
1: जी
0: मैंने तो बोलते हाँ बोलिया कपड़ा जी होता है मतलब फटे जो है मतलब
1: जी
0: सीना टली पानी मतलब
1: जी जी
0: ना काम चला जाए मैडम।
1: जी जी फिर एक कलम आंदी थी स्लेट आंदी
0: हाँ जी
1: थी,
0: कलम
1: मतलब
0: मैंने,
1: उस हिसाबे ने जेड़ा हंदे पेरेंट्स हैं से यहाँ जो दसदे कि नहीं यहाँ उस हिसाबे ने अपना टाइम निकालिया
0: टाइम ही
1: तो हाँ
0: निकाले
1: तो
0: बोले
1: हाँ
0: तालू
1: जी
0: बिजनी बिजनी नहीं होनी है, दीजिए नहीं होते
1: जी
0: जगनू नहीं होते मैडम जी,
1: जी
0: दी
1: जी
0: दीदी ने
1: जी
0: पढ़ाई की दीजिए बोले। हाँ
1: जी जी बोले तो हाँ
0: जी हाँ जी
1: क्या अपना जीवन तो हाँ जीवन तो इतना बेहतर है ना जी इस टाइम
0: हाँ जी
1: आहाँ
0: हाँ
1: दा
0: जी, चलो आने तो गाँव
1: जी
0: ठीक हो गई है जीवन, इस गांधी
1: जी
0: जनरेशन ठीक है मैडम जी,
1: ठीक है,
0: होना
1: पर उसे प्यार भावना एक दुवे अंदर बिल्कुल खत्म है ना जी?
0: खत्म है मैडम, तो सही गल है मैडम जी,
1: जी
0: आजकल तू भी वो के गला है मैडम, मतलब
1: जी
0: सहन शक्ति नहीं है मैडम जी बंदे ने,
1: जी जरा ही नहीं है सहन
0: जा
1: शक्ति
0: नहीं है मैडम जी,
1: जी
0: पहले ही
1: ता
0: होता है मैडम जी, अगर
1: जी
0: हाँ गलत काम कर दे ना चलो करे दे डांटते डांटते ग्राइंड दे भी डांटते मैडम जी, एक क्या
1: जी
0: गलत किया है
1: जी
0: अजकल
1: जी
0: देखो ना मैडम जी, करे दे कि बाहर आता कोई ग्राइंड बनाए तय के बोले गलाना मेरे बच्चे गलाना।
1: जी
0: हाँ जी मैडम जी,
1: जी
0: तो ऐसा जमाना चली गया मैडम जी। हाँ
1: जी तो सुनील
0: जी
1: जी
0: मैडम,
1: आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
0: आज गाना सुनाई ने मैडम जी, नीमो चौधरी दी आवाज है नीली नीली घोड़ी।
1: जी, नीली नीली घोड़ी
0: हाँ जी मैडम
1: जी
0: जी,
1: जरूर है गीत तो हाँ तक पहुँचा दें जी, जुड़ने वास्ते धन्यवाद जी तो हाँ
0: धन्यवाद मैडम जी,
1: जी
0: धन्यवाद।
1: तशो तो वहाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो थोड़ा दे अगे बढ़ा दे न कने तो हाँ जो लेकर चल दे न अगली फरमाइश दी ओर।

0: ये तो सारे का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सारे सुनिया ये प्यारा दया गीत प्यारी दे फरमाइश। अगले जेड़ा श्रोता ना सभी यहाँ कन्ने जुड़ चुके हैं ना करते हैं तेरा कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो, हाँ जी मैडम, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हाँ जी, धन्यवाद
0: जी। तुहां कुथु ते बोला दे कने तुहांदा ना के है जी?
1: मैं जी खन्यार दे बोला जी, बतन
0: जी। खन्यारे ते बतन जी बोला दे।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। ता क्या काम कार तुहां लगाया जी, क्या करा दे?
1: क्या करना जी, मैं रोड रेट लिखा जी आऊंगा
0: जी।
1: कहाँ रखी है तेरा
0: जी? ता मौसम कदे है जी खन्यारे दा?
1: आज चल ठीक है, थोड़ा गर्म
0: जी। आज ठीक है ना जी, बरखा ठीक हो रही है ना जी?
1: हाँ जी, बड़ी बढ़िया जी, काम लग गया ना
0: जी। जी वैसे भी बरसात दा मौसम चलिया ता बरखा दा तो होना जरूरी है ना जी?
1: हाँ जी, जरूरी है जी, काम लग गया
0: जी। जी जी, ता सुहा कुंदिया गीत चिड़े से सुनना पसंद करके
1: मैडम जी? टेंशन वाला गीत सुनाई नहीं
0: जी। कुंदिया
1: टेंशन वाला
0: जिंदगी सोनी
1: है। डोगरी गीत, डोगरी
0: जी। जी जिंदगी सोनी है जी।
1: हाँ जी
0: जी, जरूर है गीत तुहां तक पहुंचा दें जी। चुनने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद
0: जी। ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने। तशो तो जिंदगी तो सोहनी है, पर जिंदगी जो हाँ सोना किस प्रकार बनाते हैं ना, स्याह पर निर्भर करता है। हाँ हमेशा ये बोलते हैं ना कि अजकना दिन इंजॉय करा। अजकने दिने दी क्या खासियत है, अजकना जिड़ा दिन है से तुह वास्ते भी खास है। छुट्टी भरा दिन है, संडे का ये दिन है, तुह जरूर संडे दे इस दिन जो इंजॉय करा दे उन्हें ना, कने अपनी जेड़ा फरमाइश है ना से अपने पेरेंट्स अगे भी जरूर रखा दे उन्हें ना, या खुद पूरा करा दे उन्हें ना। क्योंकि बच्चे ना, बच्चे जेड़ा फरमाइश है ना से बड़ियाँ ज़्यादा रखते न अपने पेरेंट्स अगे। कने इतों भी फरमाइशी कार्यक्रम है, तो तुह जरूर इस कार्यक्रम के सफर च अहां कन्ने जुड़ी सकते, कने अहां कन्ने गलबात जेड़े से जरूर करी सकते। इसी कन्ने गल बात अहां जेड़ा करा दे थे से करा दे थे, बचपन दा जेड़ा दौर है से हर कुसी वास्ते खास होंदा। कुछ मस्ती भरा होंदा, कुछ स्ट्रगल भी होंदा कईयां वास्ते, कईयां वास्ते मस्ती भरा भी होंदा। हर कुसी दी अपनी अपनी लाइफ है, हर कुसी दी लाइफ च कुछ ना कुछ जेड़ा से जरूर चलिया होंदा। यानी कि अहां अपने बचपन ते थोड़ा जिहा सीखदे भी हन, जिम्मेदारियां ते भी सीखते हैं, कने किस प्रकार अहां अपनी जिंदगी दे सफर जो अगे बढ़ाते हैं सभी अहां जरूर सीखते हैं। तो इसी कने अहां भी कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाना है, कने अगली जेड़ा फरमाइश है से अहां पहुंचानी है पवना जी तक से रहने वाले न कांगड़े ते।

तो सारे सुनिया प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश कार्यक्रम तो सारे इस वक्त सुना देन माटी दी महक तशो तो गाल करिए कोई भी अहाँ काम कर देन या अहाँ किस चीज़ दा घमंड कर देन। कई बार होंदा ना कि अहाँ अच्छे कपड़े पहन देन तो अहाँ उस चीज़ दा भी घमंड करना जिड़े से शुरू हो जाते हैं, पर अहाँ अपने कर्मा जो कितना की अच्छे कर्म कितने की रखा देन से यहाँ पर निर्भर करते हैं, क्योंकि वक्त जिड़े से सब कुछ सिखाइंद है। जिड़ा महंगे लिवाजन से यहाँ जो कई बार इंसान दी जिड़ा सादगी है उच्च झुकाइंद है। प्यार भावना ये चीज़ मायने रख दी है ना कि ठीक है हर किसी का अपना अपना नेचर है, हर किसी की अपनी अपनी सोच है। सोच अच्छी रखा पॉजिटिव रखा ताई तो हाँ अपने जीवन जो भी आगे बढ़ाई पाते हैं। इसी कन्ने हाँ थोड़ा दे अगे बढ़ना है कन्ने अगली जिड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचानी है, क्योंकि समय जिड़ा है से यहाँ बड़ा थोड़ा दे है सिर्फ 2 मिनटा कार्यक्रम च बचिया न। तो इसी कन्ने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते हैं कन्ने की तुह तक पहुँचाते हैं फरमाइश। तो सारी भी ऐसा प्यारी दिया फरमाइशा जो जरूर इंजॉय करा कन्ने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये तुह सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुह सारे कार्यक्रम सुना दी थे अपनी रेडियो तो शशि कन्ने इसी कन्ने तुह सारे ही अपनी रेडियो तो शशि जो दिया अनुमति कन्ने जिना श्रोता दी फरमाइश हां तिना तक नहीं पहुंचाई पाए न तिना ते हां जरूर माफी चाहते न क्योंकि फरमाइशा का जोड़ा दौर था से बड़ा ज़्यादा था कने हमेशा ही कोशिश रही है कि तुहदिया जो फरमाइशा न से जरूर अह तुह तक पहुँचान तो इसी कने तुह सारे ही अपनी रेडियो तो शशि दिया अनुमति कने हमेशा खुश रहा हसते रहा कने अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गुनगुनाते रहा।

0: गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए।
2: लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
2: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आस में बेटियों को बलि मत चढ़ाएं। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का योगदान है।

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो
2: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
1: चुप यार, पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो
2: पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार।

0: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर? चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे बुड़बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी? ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

0: साजू?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

0: धर्मशाला जी श्रोताओं और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए।
2: लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
3: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आंख में बेटियों को बलि मत चढ़ाना। औरत की आंख बांस शान में हमारी बेटियों का योगदान।

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो, वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
2: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
1: चुप यार, पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार

0: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
1: डॉक्टर।
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: अरे ले आओ यार नाश्ता।
0: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
5: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
0: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
1: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
0: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
5: अबे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
0: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या?
6: हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं ना नाश्ता बना लेती हूँ। आओ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पुठे वेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और श्रोतो आऊँ हाँ तो सुगे तुंद अपना होस्ट और दोस्त सचिन कपूर। क्या हाल चाल न तुंदे और क्या हाल चाल न तुंदे ग्रां रे। उम्मीद करना तो है भी ठीक ग्रां भी ठीक। श्रोतो कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर आऊँ यानी कि तुंद अपना होस्ट और दोस्त सचिन कपूर हाजिर भुजी हुआ। आइए श्रोतो कार्यक्रम रा आगाज कर देने सभी पहले इस खूबसूरत गीत होगी। आइए हूं देन श्रोतो एक गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर थे रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो है सब ये ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा श्रोतों इस वक्त चल रही ने तुम दे सब बीवे रेडियो सेट मा ता श्रोतों हेर लिया मुरली कैसे बजाई काने। जी हाँ, ऐसे बजाई मुरली कि शुद्ध बुद्ध किया सुख होएगे। ईशान भारद्वाज इस गीत अंदर ये दसो कि मुरली ऐसी बजाई थे कि शुद्ध बुद्ध किया सुख होएगे थे। तैयार श्रोता हूँ कार्यक्रम जो हगु बढ़ंदन और हगु हुंदन है प्यार दिया गीत तो है बने रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला सोगी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रहा है। कार्यक्रम इस वक्त चल रहा हिंदी अपनी गप्पा तो श्रोतों क्या बोल लूं ईशान भारद्वाज की रूप भी बदले और जहने रूप बदले तो माबुड़े भी डरे सेली भी डरी गोरारी और सब डरे है ना, पर रूप बदलना बड़ा ज्यादा जरूरी है। श्रोतों तो है भी अपनी जिंदगी अंदर रूप जरूर बदला लेकिन इंसानियत रहा रूप किया सो जरूर बदला। श्रोतों यानी कि अच्छे काम किया अच्छे रूप अंदर काम किया सो जरूर करो करा और अच्छे अच्छे काम जरूर करो करा। बहरहाल श्रोतों याद रखा अगर तो है कुछ अच्छा हुनंदे ने समय तो सो हुनंदे ने कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा सचिन कपूर सोगे। आइए श्रोतों कार्यक्रम जो आगू बढ़ंदे और अगला गीत हुनंदे तुंदे वीडियो सेट में

श्रोताओं, ये रेडियो गुंजना और तुम्हारा अपना रेडियो गुंजना और आऊँ तुम्हारा अपना सचिन कपूर 91.2 MHz पुटे तो है रेडियो गुंजन जो ट्यून कर रहा था। श्रोताओं जी हाँ, बिंद्रा बना वो खेरी गोजरियो कुणी वो न रहने कार्यक्रम बड़ा मस्त था और ये चलना मस्त मस्त बन कर इस कार्यक्रम। बहरहाल श्रोताओ याद रखा, अच्छा हुन हुंदे था क्या हुन हुंदे वीडियो गुंजन। तब श्रोतों आइया कार्यक्रम जो हागो बढ़न और कार्यक्रम मंच हुंदे अबे प्यारे दिया गीत।

श्रोतों कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है अपनी गप्पा तुंदे सभी वे वीडियो सेट मा और बिल्कुल ईणा पीवा वो मुंजो भी ईणा पीवा को कार्यक्रम चल रहा था मुंजो भी ईणा पेना है तुंदा दिल आउना थोड़ी सकदा सभी श्रोता रहा और बिल्कुल आक मौके किया सो मिलने जो खोल वो खिड़की ताक मौके तो है भी खोली दे अपनी अपनी खिड़की यार एरा कुणी छुंदा मिलने जो और कुणी रुंदा तुसु बार आता हूँ नारदाना हो शिमलो नारदाना हो बड्डी वो सुट्टा न कतेगा तो जो क्या गलाना हो अब जिसकी नक्का सर हमने बोला था तसी क्या बोलना है ना जैसे दब्बू बुआ जैसे कोड़े बुआ बरहाल है शोधों सभी अपने अपने नक्का सरम की असो रखना चाहिए इंदिया याद रखा तो है कुछ खरा हुन उन्दे इंदा कार्यक्रम इंदी अपनी गप आइए शोधों कार्यक्रम जो बिल्कुल हगो बढ़न देन और कार्यक्रम में हुन देन ये प्यारे दिया गीत

आहा शो तो मजा चले आए इस गीत ते हुन नेरा चिट्टी वो चरेली नारे पर आयो कजो मेरे दिलड़ू जो भायो तबे चिट्टी चरेली नारा के बंदी ने शो तो सो सीधा दिलड़ू जो के ना सो भाई गंदी ना है ना और फिर वो भी भाई गंदी ना ता पर शो तो है गल्ला रे भी याद रखा चिट्टी वो चरेली नार के सो कुमारे बुआ को रोज रोज घरे घरे झंडे के सोना जुलन तुंदे है ना क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल रहा ताव बल्लो कर दा और तुसको पता जो भी बनो बिल्कुल साफ और सटीक बनो बरहाल याद रखा तो कुछ खरा हुनुंदे न तसो हुनुंदे ने कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा सचिन कपूर सोगे शोतों बरहाल टाइम में रहना पता ना चलता तुसो की गप मारद तुसो की इन इन गप्पा लेंदे दर्शोतों मुंजो यानी कि तुंदे अपने होस्ट और दोस्त सचिन कपूर जो दिया तो है इजाजत चलनुआ फिर मुलदे न दत्ते जय धर्मशाला जय हिमाचल रखा अपना अपना ख्याल सब हुन दे रहे तुंदा अपना रेडियो गुंजन धन्यवाद।

नमस्कार 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च। हिमाचल में अब ड्रेनेज सिस्टम से सुरक्षित होंगे रोड। बिना कारण बताए प्रशिक्षण संस्थान की NOC रोकना गैर कानूनी। कृषि सीजन में BVG रामची के तहत काम नहीं होंगे। इसी के साथ आइए अब समाचार सुनते हैं विस्तार से।

कांगड़ा जिला में आगामी तीन दिनों तक बारिश के ऑरेंज तथा रेड अलर्ट के मद्देनजर उपायुक्त की अध्यक्षता में हाई लेवल वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। जिला में भारी बारिश के चलते किसी प्रकार के जानी मानी नुकसान ना हो, प्रशासन इसके लिए पूर्ण रूप से तैयारी में जुटा है। उन्होंने जिलावासियों से भी आग्रह किया है कि रेड अलर्ट एवं बरसात के मौसम के चलते कोई भी व्यक्ति नदी नालों व जोखिम भरे क्षेत्रों के नजदीक न जाए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान मानव जीवन को ना हो। उनका कहना है कि गत वर्षों में बारिश से भारी नुकसान को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। सभी समस्त प्रशासनिक अधिकारी व संबंधित विभाग किसी भी विकटतम परिस्थिति से पार पाने के लिए अपने से संबंधित मशीनरी व मैन पावर को तैयार रखें। जिला एवं उपमंडल स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम को 24 घंटे एक्टिव रखा जाए, ये भी निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने जिलावासियों से आग्रह किया है कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में तत्काल जिला आपदा प्रबंधन केंद्र के टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क करें। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निवेशकों को हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा, प्रदेश निवेश की दृष्टि से देश के सर्वोत्तम गंतव्यों में से एक है। मुख्यमंत्री ने शनिवार देर सायं द इंस एंटरप्रेन्योरशिप चंडीगढ़ द्वारा आयोजित चंडीगढ़ लीडरशिप कॉन्क्लेव एवं 23वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधा और सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2400 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार नई औद्योगिक नीति ला रही है, जिसके तहत बिजली दरों को कम रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर है। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक और जलवायु संबंधी प्रतिकूलताओं के कारण इन क्षेत्रों में विकास संबंधी गतिविधियां चुनौतियों से भरी रहती हैं। लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी और भरमौर जैसे दुर्गम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कम आबादी, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और लंबे समय तक रहने वाली बर्फबारी विकास कार्यों तथा जन सेवाओं की पहुंच को चुनौतीपूर्ण बनाती रही है। वर्तमान में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जनजातीय विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, आजीविका, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हिमाचल के प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को पहचान दिलवाने के उद्देश्य से सरकार नवीन कदम उठा रही है। इस क्रम में राज्य सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट थ्री प्रोडक्ट कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को विशेष पहचान दिलाने तथा स्थानीय लोगों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर सृजित करने के प्रयासों की गति प्रदान की जा रही है। इस पहल के अंतर्गत प्रत्येक जिला से 3-3 उत्पादों सहित प्रदेश के कुल 36 उत्पादों का चयन उनके आर्थिक संभावनाओं, बाजार में मांग तथा स्थानीय महत्व के व्यापक आकलन के आधार पर किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 18 जुलाई 2026 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। देश की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस के अंतरिक्ष में परचम लहराते हुए अपने रॉकेट विक्रम 1 पर सफल परीक्षण पूरा कर लिया। पूरी तरह से स्वदेश में विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम 1 ने दोपहर 12:08 पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लॉन्च पैड से सफल उड़ान भरी। इस ऐतिहासिक मिशन को मिशन आगमन नाम दिया गया है, जो अंतरिक्ष में भारतीय निजी क्षेत्र के एक नए युग के प्रवेश का प्रतीक है। अमरीका के बाद भारत ऐसा दूसरा देश है जिसके प्राइवेट सेक्टर ने अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने में सफलता हासिल की है। हिमाचल में ड्रेनेज सिस्टम से सड़कें सुरक्षित होंगी। लोक निर्माण विभाग ने राज्य में सड़कों को मानसून के दौरान होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ड्रेनेज इम्प्रूवमेंट के तहत कार्यों की विस्तृत प्रक्रिया और दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सड़कों पर जल निकासी की वैज्ञानिक व्यवस्था विकसित कर बार बार होने वाले कटाव, सड़क धंसने, जल भराव, भूस्खलन और कलवर चौक होने जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान करने के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति को बिना कारण बताए अस्वीकृत करने के निर्णय को रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रशासनिक या सरकारी प्राधिकारी के पास बिना तेज तर्क के व स्पष्ट कारणों के भेदभावपूर्ण तरीके से काम करने की पूर्ण शक्ति नहीं है। निर्णय लेना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। ये आदेश न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने शिवा एजुकेशनल सोसाइटी की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। प्रदेश में कृषि सीजन के दौरान बीबीजी रामजी योजना के तहत होने वाले काम नहीं होंगे। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत राज्य सरकार ने प्रदेश में कृषि सीजन के दिनों को अधिसूचित कर दिया है। इन दिनों में योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों को रोजगार नहीं मिलेगा और वे अपनी खेती कर सकेंगे। कृषि सीजन 60 दिन का होगा, जिसे ग्रामीण विकास विभाग ने अलग अलग सीजन के हिसाब से बांटा है ताकि मजदूरों को नुकसान ना हो। कृषि विभाग ने कृषि सीजन को अधिसूचित कर दिया है और प्रदेश के सभी जिलों में खंड स्तर पर उसी हिसाब से रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के साथ हिमाचल ने राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान कायम रखी है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स PGID 2025-26 में प्रदेश के 6 जिले उत्तम 3 श्रेणी में आए हैं। यूडाइस रिपोर्ट में भी हिमाचल की सफलता सामने आई है। प्रशासनिक सुधार के लिए उठाए सख्त कदम व स्कूलों में निगरानी बढ़ने के कारण ही हिमाचल शिक्षा में पड़ोसी राज्यों से आगे निकला है। स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली को बेहतर तरीके से लागू किया है। वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के साथ लगते प्राथमिक माध्यमिक व उच्च स्कूलों को जोड़ा गया, इससे स्कूलों में निगरानी बढ़ी।

प्रदेश के कुल 36 उत्पादों का चयन उनकी आर्थिक संभावनाओं, बाजार में मांग तथा स्थानीय महत्व के व्यापक आकलन के आधार पर किया गया है, जिसमें बिलासपुर से अदरक, रेशम उत्पादन और मत्स्य पालन, चंबा से चंबा चप्पल, सफेद मक्की और ऊन, हमीरपुर से हल्दी, बांस और मक्की, कांगड़ा से कांगड़ा चाय, कांगड़ा लघु चित्रकला और गिलोय, किन्नौर से हिमाचली चिल्ली तेल, किन्नौरी शॉल और चिलगोजा, कुल्लू से ट्राउट मछली, हेम्प ऑयल और कुल्लू टॉपी, लाहौल स्पीति से सी वक्थॉन, पुल्ले और हरी मटर, मंडी से सेपू बड़ी, धातु शिल्प तथा पत्थर या लकड़ी की नकाशी, शिमला से सेब आधारित उत्पाद, स्थानीय शहद, जौ का माल्ट एवं आटा तथा गुच्छी, मशरूम, सिरमौर से लहसुन, अदरक और सिरमौरी लोइया, सोलन से मशरूम, टमाटर और औषधि उत्पाद तथा ऊन से आलू, लीची और ड्रैगन फ्रूट शामिल हैं। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर धर्मशाला के साथ मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने, नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर शो तो इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। शो तो आज का गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यारी सी नमस्ते, और इसी नमस्ते के साथ शो तो हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और पूरे 2 घंटे का सफ़र आपके साथ रहेगा। इस 2 घंटे के सफ़र में करेंगे ढेर सारी जानकारियाँ साझा और सुनवाएंगे आपको प्यारे प्यारे गीत। तो श्रोता बिल्कुल देरी न करते हुए थोड़ा सा कार्यक्रम में बढ़ते हैं। कार्यक्रम को और मनोरंजक बनाने के लिए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोताओं, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में एक बार फिर से सभी श्रोताओं का स्वागत है। और श्रोताओं, आज दिन है रविवार का, और एक रविवार का दिन ही होता है जो रिश्तों को संभालता है, बाकी दिन तो जिम्मेदारियों की कश्ती को संभालने में ही खर्च हो जाते हैं। और श्रोताओं, बात करें अगर हम हर दिन की, तो हर दिन तो हमारी जिम्मेदारियां होती हैं कामकाजी, लेकिन घरेलू जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसमें अपने बच्चों को देखना, अपने माता पिता को देखना, अपने साथी को देखना, परिवार संभालना, रिश्तेदारियां निभाना, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हमें निभाना होता है। इसी को तो जिम्मेदारियाँ निभाना कहते हैं, मिलना जुलना, अपनों से बातचीत करना, और इसी तरह से कैसे ज़िंदगी का सफ़र भी कट जाता है पता ही नहीं चलता है। श्रोता, मिलते मिलाते ज़िंदगी यूं ही बीत जाती है और बहुत सारी यादें ज़िंदगी में रह जाती हैं, उन्हें यादों के सहारे भी हम कभी जी लिया करते हैं। तो श्रोता, यादें तो हमेशा हम सभी के साथ जुड़ी रहती हैं और जीवन भर हमारा साथ देती हैं। तो अपनी बातों के साथ फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और इन्जॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो।

श्रोता, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। इस प्यारे से कार्यक्रम को श्रोताओं लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दिन की, यानी 19 जुलाई की, महीने के 20 दिन, लगभग 19-20 दिन के करीब हम पहुँच चुके हैं और 10 दिन बाकी है। यूँ ही दिन महीने साल बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और हर दिन की अपनी एक ख़ास अहमियत होती है, हर दिन ख़ास जानकारियों से भरा होता है। अगर हम बात 1959 की करें तो तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और 1974 में महान क्रांतिकारी शहीद ऊधम सिंह की अस्थियों को लंदन से नई दिल्ली लाया गया था। 1827 की ओर थोड़ा सा रुक करें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत और सिपाही मंगल पांडे का जन्म हुआ था। ढेर सारी जानकारियां आज के दिन लिए हुए हैं। और 1870 की बात करें तो फ्रांस ने प्राशिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। सन 2001 में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल 4.7 रिलीज़ किया था। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ भी, और भी हम ढेर सारी आपके लिए पिटारे में भर कर लाए हैं, उन्हें भी यहाँ पर खंगालेंगे। लेकिन थोड़ा सा फिर से हम अपनी बातों को देते हैं विराम और इन्जॉय करते हैं आप सभी के साथ मिलकर कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत को सुनते हैं। इस गीत को

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से हम आपके रूबरू हो चुके हैं और फिर से कुछ और जानकारियां आपके साथ साझा कर लेते हैं। 2001 की बात करें श्रोताओं, आज ही के दिन ताश, लिपस्टिक, नाखून पॉलिश और शतरंज सहित 30 वस्तुओं का आयात अफगानिस्तान से प्रतिबंधित हुआ था। 2003 में रूस के अंतरिक्ष यात्री यूरी माले थान को अंतरिक्ष में शादी रचाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। इसके साथ साथ 2004 में 3 बार टाले जाने के बाद दुनिया के सबसे बड़े दूर संचार उपग्रह को लेकर एरियन 5 फ्रेंच गुयाना के कोशु प्रक्षेपण केंद्र से रवाना हुए थे। इसके साथ साथ थोड़ा सा हम और आगे की ओर बढ़ें, यानी 2005 की ओर रुक करें तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिकन कांग्रेस को संबोधित किया था और साथ ही साथ 2008 में अमेरिका ने प्रशांत महासागर में लक्ष्य निर्धारित कर लंबी दूरी तक मार कर सकने में सक्षम मिसाइल का प्रशिक्षण किया था। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियां भी और भी हैं हमारे पास जो हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

शोधो इसी गूंज के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां अभी आप तक पहुंचानी है। शोधो, आज के दिन की हम बात करें तो आज के दिन को हम मना रहे हैं राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस। इसे हम हर साल 19 जुलाई को मनाते हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे घोषित भी किया गया हर विश्व फुटबॉल दिवस प्रतिवर्ष जो है हम आज ही के दिन मनाते हैं। ये दिन दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों के प्रति जुनून, खेल भावना और एकजुटता करने की क्षमता का सम्मान करने के लिए भी मनाया जाता है। और साथ ही साथ श्रोताओ, आज के दिन के महत्व की बात करें तो फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है। इसमें 200 से अधिक देशों में लगभग 25 करोड़ लोग खेलते हैं। और साथ ही साथ आज के दिन की इतिहास की बात करें तो 1924 में पेरिस ओलंपिक खेलों के दौरान पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। इसमें 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया था। तो खेल जो है श्रोतो भारत में खेला जाता है, भारतवर्ष में खेला जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये बहुत ही समय से खेला जा रहा है और जश्न मनाने का भी दिन होता है। इस दिन स्थानीय स्तर पर मैच आयोजित किए जाते हैं, युवाओं को शारीरिक रूप से सक्रिय रखने के लिए प्रेरित किया जाता है और फुटबॉल के इतिहास के बारे में भी जागरूकता बढ़ाई जाती है। और वैसे भी हम सभी जानते हैं कि खेल का हमारे जीवन में कितना महत्व रहता है, खेल क्यों जरूरी है। साथ ही साथ खेलों से जो हमारा शरीर है वो भी फिट एंड फाइन रहता है, एक लचीलापन बॉडी में आता है और बहुत सारे स्वास्थ्य में भी सुधार आते हैं। और वैसे भी अगर बात की जाए तो खेलने के तो ढेर सारे फायदे होते ही हैं। और खेल बहुत सारे हमारे श्रोताओं का, बहुत सारे दोस्तों का, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं उन्हें उनका शौक है और शौक के तौर पर भी वो लोग जो है इस खेल को अपने जीवन में उतारते हैं और साथ ही साथ अपना करियर भी खेल के जरिए बनाते हैं। इसके साथ देश का, अपने गांव का, अपने परिवार का और अपनों का नाम भी खेल के जरिए रोशन करते हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ भी और भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें भी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोता, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। श्रोताओं, खेलों के बारे में हम बात कर रहे थे, खासकर फुटबॉल दिवस आज के दिन हम मना रहे हैं। तो खेलों ने भारतीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में भी अहम योगदान रहा है। फुटबॉल एक प्रमुख वैश्विक खेल होने के नाते एक द्वितीय स्थान रखता है और महज मनोरंजन से परे एक सार्वभौमिक भाषा है जिसे सभी उम्र के लोग बोलते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सीमाओं से परे है। ये साझा जुनून समुदाय और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देता है। फुटबॉल की

श्रोतो, इस प्यारे से गीत के बाद थोड़ा सा कार्यक्रम में हम फिर से वापस आते हैं और कुछ स्थानीय जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण के प्रधान सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन ने शुक्रवार को जिला शिमला के प्रगति नगर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का दौरा कर संस्थान के शैक्षणिक प्रशासनिक अनुसंधान तथा आधारभूत संरचना संबंधी गतिविधियों की समीक्षा की है। इस अवसर पर डॉक्टर जैन ने इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निकल तथा आईटी

IBK स्काई सदस्य और कर्मचारियों के साथ संवाद किया है। उन्हें समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए संस्थान को और सशक्त बनाने पर बल दिया है। उन्होंने शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देने तथा आधारभूत संरचना के उन्नयन तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास की दिशा में कार्य करने के लिए कहा है। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों को थोड़ा सा फिर से हम यहाँ पर रोकते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी के रेडियो सेट पर चल रहा है गुड इवनिंग धर्मशाला। श्रोताओं, रेडियो को सुनने का एक अपना ही अलग मज़ा होता है। फ्री बैठे हों या काम कर रहे हों, दोनों समय में से आराम से सुना जा सकता है। और अगर गाने साथ साथ में चल रहे हों तो हमारे कामकाज भी फटाफट से हो जाते हैं। इस समय हमारे जो श्रोता हैं, ज़रूरी नहीं है आजकल के समय में हमारी बहनें ही खाना बनाती हैं, हमारे पुरुष भाई भी शौक रखते हैं खाना बनाने का। इस समय बहुत सारे घरों में खाना बनाने का समय हुआ पड़ा है और बहुत सारे जो श्रोता हैं किचन में भी होंगे, साथ ही साथ कुछ आराम कर रहे होंगे क्योंकि छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है, मज़े का दिन होता है, रेडियो लगा होता है और इंजॉय कर रहे होते हैं हम रेडियो गुंजन धर्मशाला, क्योंकि वहाँ से हम प्यारे प्यारे गीत आप तक पहुँचाते हैं, आपके लिए लेकर आते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमारे श्रोताओं को पसंद भी आए। इसके साथ साथ ढेर सारी जानकारियाँ भी होती हैं, जानकारियों से फिर से याद आया, कुछ स्थानीय जानकारियाँ आपके साथ और साझा किए लेते हैं। तो धर्मशाला स्मार्ट सिटी के रूप को विकसित किए जाने के दावे पर दूसरी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल मैक्लोडगंज के मुख्य चौक बाजार में मॉनसून के दौरान सीवरेज की समस्या से सवाल खड़े कर दिए हैं। भारी वर्षा के समय सीवरेज नालियां उफनने से गंदा पानी दुकानों में घुस गया है और बाज़ार में दुर्गंध फैल रही है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि बारिश शुरू होते ही उनके ग्राहकों की बजाय सीवरेज के पानी से हमें जूझना पड़ता है और कई दुकानदारों को बाल्टियों और झाड़ुओं की मदद से पानी बाहर निकालना पड़ता है। श्रोताओं, उनका कहना है कि दुकानों के भीतर फैलने वाली बदबू के कारण ग्राहक भी अधिक देर तक नहीं रुकते हैं, जिसे कारोबार प्रभावित हो रहा है। और व्यापारियों के अनुसार दुकानों के बाहर बनी सीवरेज नालियों के ऊपर लगे लोहे के जाले कुछ समय बाद हटाए जाने और सड़क तथा नालियों का स्तर लगभग समान होने के कारण ये समस्या और गंभीर हो गई है। उनका आरोप है कि वर्षों से समस्या बनी हुई है, लेकिन नगर निगम और संबंधित विभागों की ओर अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों को हम थोड़ा सा यहीं पर रोकते हैं और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं हूं आज के कार्यक्रम में आपके साथ आपकी दोस्त सुमन लेकर हाजिर हुई हूं इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो श्रोताओ, अपनी तरफ से हम पूरी उम्मीद के साथ आते हैं कि हमारे श्रोताओं को प्यारे से गीत पसंद भी आए और जानकारियां जो हम लेकर आते हैं वो भी आपको अच्छी लगे। और जानकारियाँ जो है आज की, आप जानते ही हैं, राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस की हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। खेल कोई भी हो, बहुत ही सुकून मन को देता है और खेल कर हमें आनंद भी महसूस होता है। थोड़ी सी बात अगर हम फुटबॉल की करें तो किसने सोचा था कि घास के मैदान पर 90 मिनट तक गेंद को इधर उधर किक करना कितना मज़ेदार हो सकता है। खैर, फुटबॉल के प्रशंसक श्रोताओं जानते हैं, जिनका ये पसंदीदा खेल है, जो देखते हैं या खेलते हैं, वो जानते हैं कितनी मौज मस्ती इस खेल में होती है। और साथ ही साथ दुनिया भर में फैले बहुत सारे लोग इस खेल को पसंद भी करते हैं। फुटबॉल के इतिहास की बात की जाए तो बहुत पुराना है फुटबॉल का इतिहास। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी शुरुआत 3री सहस्राब्दी ईसा पूर्व हो चुकी थी। उस समय चीन में लोग चमड़े और पंखों से बने गेंद को लात मारकर खेलते थे और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर दुनिया के अधिकांश हिस्सों में फुटबॉल के नाम से जाने जाने वाला सॉकर 1800 के दशक में इंग्लैंड के लंदन में एक अधिक औपचारिक खेल बन गया था। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ अभी और भी हम साझा करेंगे। फिलहाल सुनते हैं, इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

0: शुद्ध इसी गीत के साथ साई के 7 बजे हैं और कार्यक्रम में समय हो गया है समाचारों का।
1: संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावो श्रीकृष्ण देवरायल्लू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रिवोल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिवनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मिवनी से भेंट की। जांजीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मिवनी उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वरम पारद्वीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा और राज्य के तटीय क्षेत्रों में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वायत्त संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा है कि यह हमला जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है। ईरान ने अमरीकी हमले में हुए नुकसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 46 ओवर में 2 विकेट पर 315 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शोधो इसी अपनेपन की गूंज के साथ हम कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस की हम बात कर रहे थे। खैर अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ के बात करें अगर खेलों के बारे में, तो खेल जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये केवल हमारे शारीरिक नहीं बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये हमें स्वस्थ और मजबूत बनाता है, साथ ही साथ मानसिक तनाव को दूर कर हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व विकास भी करता है। इसके साथ साथ खेलों से अनुशासन, टीम वर्क और हार जीत को समान रूप से स्वीकार करना जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल हम सीखते हैं। और साथ ही साथ श्रोताओं, शारीरिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो इससे शरीर की कसरत भी हो जाती है। दौड़ने से बहुत सारे जो है बीमारियां भी दूर होती हैं और नियमित रूप से खेल खेलने से हमारी मांसपेशियाँ और हड्डियाँ मजबूत होती हैं। इसके साथ साथ हमारा हृदय जो है स्वस्थ रहता है, मोटापा, मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा भी कम होता है। जी हाँ श्रोताओ, मानसिक विकास की ओर थोड़ा सा हम आगे बढ़ें तो खेल खेलने से मानसिक शांति मिलती है, ताजगी का अनुभव होता है और साथ ही साथ एकाग्रता बढ़ने में भी मदद मिलती है। अनुशासन की श्रोताओ हम बात कर रहे थे तो अनुशासन खेल के कुछ नियम होते हैं जो व्यक्तियों को अनुशासित बनाते हैं। इसके अलावा खेल हमें बहुत कुछ सिखाता है, हार से निराश होने की बजाय हमें कैसे आगे बढ़ने है ये भी बताया जाता है। टीम में खेलने से सहयोग, सामंजस्य और नेतृत्व की भावना पैदा होती है और व्यक्ति समाज में मिलजुल कर रहना सीख जाता है। बहुत सारे दोस्त भी श्रोताओं हमारे खेल के जरिए बन जाते हैं। वैसे तो समाज में भी दोस्त होते हैं, स्कूल में, कॉलेज में और गेम खेलते हुए भी बहुत सारे दोस्त हमारे हमें मिल जाते हैं और इन गेम्स के द्वारा जो है मिले हुए दोस्त भी बहुत कुछ हमें सिखाते हैं, हमारा साथ देते हैं। और कई बार क्या होता है हम अपने घरों से दूर भी रहते हैं तो वही दोस्त हमारा सहारा भी बनते हैं। तो दोस्ती मजबूत होनी चाहिए और दोस्त ऐसा होना चाहिए जो दुख सुख में हमारा साथ दे और सही मार्गदर्शन करे। तो श्रोताओ ये तो थी हमारी जानकारियाँ। जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत के साथ। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोता, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में श्रोता आगे बढ़ते हैं और कुछ स्थानीय जानकारियां आपके साथ और साझा करते हैं। तो श्रोता, हिमाचल के प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों की पहचान दिलवाने के उद्देश्य से सरकार नवीन कदम उठा रही है। इस क्रम में राज्य सरकार ने बन डिस्ट्रिक्ट 3 प्रोडक्ट कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों की विशेष पहचान दिलाने तथा स्थानीय लोगों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर सृजित करने के प्रयासों को गति प्रदान की जा रही है। इस पहल के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 3-3 उत्पादों सहित प्रदेश के कुल 36 उत्पादों का चयन उनकी आर्थिक संभावनाओं, बाजार में मांग तथा स्थानीय महत्व के व्यापक आकलन के आधार पर किया है। उन्होंने बिलासपुर से अदरक रेशम उत्पाद और मत्स्य पालन, चंबा से चंबा चप्पल सफ़ेद मक्की, ऊना हमीरपुर से हल्दी बांस और मक्की, कांगड़ा से कांगड़ा चाय, कांगड़ा लघु चित्रकला और गिलोय, किन्नौर से हिमाचली चुल्ली तेल, किन्नौर से शॉल और चिलगोजा, किन्नौर से ट्राउज मछली इत्यादि चीज़ों को उत्पाद तथा ऊना से आलू लीची और ड्रैगन फ्रूट शामिल किए हैं। तो श्रोताओ, अपनी जानकारियाँ थोड़ी सी हम यहाँ पर रोकते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए।

0: वक्त जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है और कब इतना समय आपसे बातें करते हुए बीत गया पता ही नहीं चला। वक्त से शुद्ध याद आया कि वक्त के साथ चलते चलते कुछ बातें बड़ी साफ नज़र आने लगती है। हर बहस जीतना ज़रूरी नहीं होती है और हर रिश्ते को निभाना ज़रूरी नहीं होता है। हर चीज़ को खुश रहना मुमकिन नहीं है और बात बस एक बात समझ आ रही है। कहते हैं जियो और जीने दो, जो साथ चलना चाहे उसका हाथ थाम लो, जो दूर जाना चाहे उसे दुआओं के साथ जाने दो। तो श्रोताओं, बहुत सारी बातें होती है जीवन के सफ़र में, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ निभाते हैं। इस सीखते और निभाने के चक्कर में ज़िंदगी कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता है। कब जाने ये सफ़र भी हमारा पूरा होने वाला होता है, उस समय हमें याद आती है कि अरे हमने तो खुद के लिए जिया ही नहीं है, समय ही नहीं लगा, जिम्मेदारियों को निभाने में वक्त निकल गया। जिम्मेदारियाँ पूरी करते करते कभी घरेलू, कभी मायके की जिम्मेदारियाँ, कभी ससुराल की जिम्मेदारियाँ, कभी बच्चों की जिम्मेदारियाँ, बस इन्हीं चक्रों में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है और खुद के लिए हम जी नहीं पाते हैं। तो श्रोताओ, जितना टाइम आपके पास बचा है, लगता है आपको कि आपने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जी ली है या आधी जी ली है, कुछ बाकी है, तो खुद के लिए जीना सीखिए। बहुत कुछ है ज़िंदगी में, बहुत हसीन ज़िंदगी है। अगर कहते हैं ज़िंदगी को हम प्यार से जिए तो बहुत अच्छी, बहुत हसीन है ज़िंदगी की, और अगर ज़िंदगी को टेंशनों के साथ जिए तो ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आता है। बस ज़िंदगी में एक बात को सोच कर रखिए, एक बात को अपने पल्ले बांध लीजिए कि टेंशन परेशानियाँ किसी नहीं हैं। हर कोई आज के समय में इन चीज़ों से जूझ रहा है, इन चीज़ों से जूझते जूझते हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और सीखते भी हैं, इंजॉय भी करते हैं। और दुख सुख की बात की जाए श्रोताओं, तो दुख सुख जो है जीवन के पड़ाव है। कभी जीवन में दुख आता है तो कभी सुख आता है, कभी मौसम में धूप होती है तो कभी छांव होती है। इसी तरह से हमारा जीवन चलता रहता है। जो पल ज़िंदगी के हमें मिले हैं इसे खूब इंजॉय कीजिए, खूब जिए। इसी तरह से हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप तक फिर से पहुंचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।
1: रो रहे

श्रोताओं, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम में हम थोड़ी सी बात फिर से खेलों की कर लेते हैं, क्योंकि खेल हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। खूब आनंद आता है खेल खेलने से भी और खेल देखने से भी। बहुत सारे लोग जो हैं खेलों के फ़ैन भी होते हैं। आपने देखा ही होगा कि क्रिकेट स्टेडियम की अगर हम बात करें तो जब भी यहाँ पर मैच लगते हैं तो कितने सारे लोग, कितनी भीड़ हो जाती है, कितनी भीड़ उमड़ती है मैच देखने के लिए। तो खेल कोई भी हो, चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, हर कोई खेलना पसंद करता है। और बहुत सारे फ़ायदे खेलों के श्रोता होते हैं। आउटडोर खेल बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, फिटनेस में मदद मिलती है और नियमित व्यायाम हमारा दिल, हड्डियों और फेफड़ों की कार्यप्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। ये पुरानी बीमारियों को रोकने में भी मदद करता है। और खेल मधुमेह प्रबंधन, वजन घटाने, रक्त परिसंरचना और तनाव कम करने में भी मदद करता है। मस्तिष्क और शारीरिक विकास का संयोजन खेल के माध्यम से हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करने और टोन करने की अनुमति देता है। श्रोताओं, खेल के माध्यम से छात्र बहुत कुछ सीखते हैं और बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। स्वस्थ जीवन शैली जीना कितना महत्वपूर्ण है। खेल मोटापे को रोकता है, स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देने में मदद करता है। खेल युवाओं को अधिक सब्जियों और फल खाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है और साथियों की तुलना में मोटे होने की संभावना भी कम हो जाती है। बड़े होकर सक्रिय व्यस्क बनने की संभावना अधिक रहती है। बहुत सारे फायदे होते हैं श्रोताओं खेलों के, इससे हमारा शरीर स्वस्थ, फिट एंड फाइन रहता है। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारियाँ। जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से आप सभी का करवाते हैं।

श्रोताओ, इसी गूंज के साथ कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारियां और आपके साथ साझा करते हैं। कांगड़ा जिले में आगामी 3 दिनों तक बारिश के ऑरेंज तथा रेड अलर्ट के मद्देनज़र रविवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में हाई लेवल वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने कहा कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कांगड़ा जिले में 22 जुलाई को ऑरेंज तथा 21-22 जुलाई को रेड अलर्ट बताया गया है। जिले में भारी वर्षा के चलते किसी प्रकार का जानी माली नुकसान ना हो, प्रशासन इसके लिए पूर्ण रूप से तैयारी में जुटा है। उन्होंने जिला वासियों से भी आग्रह किया है कि रेड अलर्ट तथा बरसात के मौसम के चलते कोई भी व्यक्ति नदी नालों तथा जोखिम भरे क्षेत्रों के नज़दीक न जाए ताकि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान मानव जीवन को ना हो। उन्होंने कहा है कि गत वर्षों में बारिश से भारी नुकसान को ध्यान रखते हुए प्रशासन को की मुस्तैदी रखने के लिए कहा है और सभी समस्त प्रशासनिक अधिकारी तथा संबंधित विभाग किसी भी विकटतम परिस्थितियों से पार पाने के लिए अपने से संबंधित मशीनरी तथा मैन पावर को तैयार रखते हुए इस निर्देश को जारी किया गया है कि जिला तथा उपमंडल स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम की 24 घंटे एक्टिव रखा जाएगा। ये निर्देश भी दिए गए हैं। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। जानकारियों के साथ साथ इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। आज के कार्यक्रम में श्रोताओं, तो हमने ढेर सारी जानकारियां आपके साथ साझा की है, उम्मीद है आपको पसंद भी आई होंगी। तो कार्यक्रम में अपनी बातों और जानकारियों के साथ फिर से सुनवाते हैं आपको एक और प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम में समय हो गया है 7:45, तो आइए सुनते हैं समाचार।
1: ये आकाशवाणी शिमला है, अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, मुख्यमंत्री ने कहा सरकार जल्द लागू करेगी नई उद्योग नीति, उद्योगों को उपलब्ध करवाई जाएगी सस्ती बिजली। संसद का मॉनसून सत्र कल से, सरकार ने सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से मांगा सहयोग। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक द्वेष के चलते बंद किए हजारों संस्थान। नाहन शहर में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु हुए शामिल। और प्रदेश में अगले 48 घंटों में भारी वर्षा का अलर्ट, प्रशासन ने लोगों से की एहतियात बरतने की अपील। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द नई औद्योगिक नीति लाएगी, उद्योगों की सुविधा के लिए इस नीति के तहत बिजली दरों को कम रखा जाएगा। चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधा और सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आईटी क्षेत्र को विस्तार देने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान कर रहा है। इसके अलावा सरकार डेटा स्टोरेज अधोसंरचना विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है।
2: अगर आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिन्यूअल पावर कहीं मिलेगी तो हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन में अगर कोई आने वाले समय में पायनियर स्टेट बनेगा, जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश विल बी द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जहां हिमाचल ग्रीन एनर्जी में आगे बढ़ेगा। हमने उसके लिए रिसर्च काम किया है, अभी हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया के दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। आईटी सेक्टर में हमारे पास लैंड भी है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हिमाचल के लोग हैं, आप आईटी सेक्टर में आइए, 24 घंटे आपको बिजली मिलेगी। हमारी न्यू इंडस्ट्रीज पॉलिसी आ रही है, हम बिजली का रेट कम करने जा रहे हैं ताकि आप लोगों को फायदा हो।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है, जिससे पर्यटकों और औद्योगिक क्षेत्र दोनों को लाभ मिलेगा। प्रदेश के प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को पहचान दिलाने के उद्देश्य से सरकार नवीन कदम उठा रही है। इसी कड़ी में वन डिस्ट्रिक्ट थ्री प्रोडक्ट कार्यक्रम के तहत जिले के विशिष्ट उत्पादों को पहचान दिलाने और रोजगार सृजन के प्रयासों को गति दी जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि इस पहल के तहत प्रदेश के 36 उत्पादों का चयन उनकी आर्थिक संभावनाओं, बाजार मांग और स्थानीय महत्व के आधार पर किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य की आगामी औद्योगिक नीति में चिन्हित उत्पादों से जुड़े उद्यमों के लिए व्यापक प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा चयनित उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन पर भी विशेष बल दिया जाएगा। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सत्र के सुचारू संचालन में सभी दलों से सहयोग की अपील की है।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफी चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: ऊना जिले के बीत क्षेत्र में सन 1949 में स्थापित ऐतिहासिक लाजपत राय वाटर वर्क्स टालीवाल जलापूर्ति योजना को हेरिटेज म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने योजना का निरीक्षण करने के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योजना के ऐतिहासिक पंप हाउस, मशीनरी, तकनीकी अभिलेखों और जलापूर्ति व्यवस्था से जुड़ी धरोहर को संरक्षित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि म्यूजियम के रूप में विकसित होने के बाद ये परिसर विद्यार्थियों, अभियंताओं, शोधकर्ताओं और आम लोगों के लिए ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि शिमला जिले में छैला नेरी पुल यशवंत नगर सड़क के लिए 250 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। चौपाल में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि केंद्र से धनराशि मिलते ही इस सड़क का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चौपाल क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए की लागत से 17 सड़कें बनना भी प्रस्तावित है, जिसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने जनसमस्याएं सुनकर इनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का आश्वासन भी दिया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि बीते 3.5 वर्षों में जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में संतुलित व योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया गया है। कोटखाई क्षेत्र के गुम्मा में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इलाके में सड़क, स्वास्थ्य व शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया गया है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने केवल राजनीतिक द्वेष के चलते पूर्व सरकार द्वारा खोले गए संस्थान बंद किए हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि 3.5 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में बताने के लिए सरकार के पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं प्यारी बहना सुख समृद्धि योजना के पैसे का इंतजार कर रही हैं, लेकिन सरकार आए दिन पात्रता की शर्तें बदलकर उन्हें गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास उपलब्धियों के नाम पर 2500 से अधिक संस्थान बंद करने, पूर्व सरकार की योजनाओं का बजट रोकने, 1.5 लाख से अधिक पद समाप्त करने और 10,000 से अधिक लोगों को नौकरियों से निकालने सहित किसानों, बागवानों व महिलाओं को ठगने के अलावा कुछ नहीं है। दूसरी ओर भाजपा ने यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार रोजगार सृजन के बजाय रोजगार के अवसर लगातार समाप्त कर रही है। पार्टी महासचिव संजीव कटवाल ने कहा कि विभिन्न विभागों में हजारों पद खाली पड़े हैं, लेकिन उन्हें भरने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स सेवाओं पर भी कड़े प्रतिबंध लगाकर सरकार युवाओं के लिए उपलब्ध सीमित अवसरों को भी समाप्त कर रही है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज भगवान जगन्नाथ की 18वीं भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इनमें हिमाचल प्रदेश के अलावा बाहरी राज्यों के श्रद्धालु भी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, सांसद सुरेश कश्यप और स्थानीय विधायक अजय सोलंकी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा है कि हमीरपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की योजनाएं मंजूर की हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हमीरपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें हमीरपुर बाईपास पर नए बस अड्डे का निर्माण, वर्तमान बस अड्डे की जगह सिटी सेंटर विकसित करने का प्रस्ताव, नगर निगम कार्यालय भवन, जसकोट में हेलीपोर्ट और सलासी में जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय भवन जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। हमीरपुर नगर निगम के तहत विकास नगर में आज जनसुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से ये क्षेत्र एक आदर्श और सुनियोजित शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने सुनील शर्मा बिट्टू के समक्ष हैंडपंप और अन्य जनसुविधाओं से संबंधित समस्याएं रखी। सुनील शर्मा बिट्टू ने इन सभी समस्याओं के जल्द समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से कई क्षेत्रों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। राजधानी शिमला सहित कुछ अन्य इलाकों में बीती रात व्यापक वर्षा हुई है। कई क्षेत्रों में भारी वर्षा से नदी नाले उफान पर हैं। भूस्खलन के चलते चंबा शिमला वाया सिंहुता राजमार्ग पनियाला नाला में अवरुद्ध है, जिसे खोलने के लिए प्रयास जारी हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक विभिन्न जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से प्रशासन द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का गंभीरता से पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की टीमें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उपलब्ध हैं और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच मौसम विभाग के भारी वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए सिरमौर जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं ताकि आपदा की स्थिति में तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू किया जा सके।
4: PWD, इलेक्ट्रिसिटी, IPH और हमारे जो लोकल बॉडीज हैं सभी को हमने अलर्ट पे रखा हुआ है। हमारे सारे SDMs और हमारी रेवेन्यू टीम अलॉन्ग विद द अदर लाइन डिपार्टमेंट स्टाफ एवरीबॉडी इज ऑन अलर्ट। जहां भी दिक्कत होगी तो प्रशासन वहां रहेगा, पर हमारी जनता से भी यही अपील है कि बारिश का टाइम है, अपना सेफ्टी का खुद ध्यान रखें और जब जरूरी ना हो तो बाहर ना निकले और कहीं कुछ समस्या होती है तो 1077 पे डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा DDMA ग्रुप है उसमें हमें अलर्ट करते हैं, हमें भी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं तो हम अपनी आवश्यक कार्रवाई।
1: प्रदेश के अन्य जिलों में भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार जल्द लागू करेगी नई उद्योग नीति, उद्योगों को उपलब्ध करवाई जाएगी सस्ती बिजली। संसद का मॉनसून सत्र कल से, सरकार ने सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से मांगा सहयोग। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक द्वेष के चलते बंद किए हजारों संस्थान। नाहन शहर में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु हुए शामिल। और प्रदेश में अगले 48 घंटों में भारी वर्षा का अलर्ट, प्रशासन ने लोगों से की एहतियात बरतने की अपील। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
0: समाचारों के बाद देशोद्धव कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला और आज का कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी दोस्त सुमन के साथ। तो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर अब हम आप पहुंचे हैं, तो चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए।
2: लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
2: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आंख में बेटियों को बलि मत चढ़ाना। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का भी योगदान है।

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
2: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
1: चुप यार, पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाओ।
2: सभा लगी है, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है, ध्यान से सुनना।
3: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
4: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
5: बढ़िया,
4: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
6: कितना टाइम?
4: अरे पूरे 2 घंटे।
6: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुरबक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
7: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
6: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
4: डॉक्टर। अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
6: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
4: टीबी?
6: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
7: वो किसी को भी हो सकता है।
6: हाँ, और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
4: चलो,
6: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: अरे ले आओ यार नाश्ता।
3: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
8: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
9: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
4: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
9: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
8: अबे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
9: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या?
3: हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं ना नाश्ता बना लेती हूँ। आओ।

नमस्कार। 91.9 FM हर्ट्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रचिता के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च। हिमाचल में अब ड्रेनेज सिस्टम से सुरक्षित होंगे रोड। बिना कारण बताए प्रशिक्षण संस्थान की NOC रोकना गैर कानूनी। कृषि सीजन में BVG रामजी के तहत काम नहीं होंगे। इसी के साथ आइए अब समाचार सुनते हैं विस्तार से। कांगड़ा जिला में आगामी 3 दिनों तक बारिश के ऑरेंज तथा रेड अलर्ट के मद्देनजर उपायुक्त की अध्यक्षता में हाई लेवल वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। जिला में भारी बारिश के चलते किसी प्रकार के जानी मानी नुकसान ना हो, प्रशासन इसके लिए पूर्ण रूप से तैयारी में जुटा है। उन्होंने जिलावासियों से भी आग्रह किया है कि रेड अलर्ट एवं बरसात के मौसम के चलते कोई भी व्यक्ति नदी नालों व जोखिम भरे क्षेत्रों के नजदीक न जाए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान मानव जीवन को ना हो। उनका कहना है कि गत वर्षों में बारिश से भारी नुकसान को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। सभी समस्त प्रशासनिक अधिकारी व संबंधित विभाग किसी भी विकटतम परिस्थिति से पार पाने के लिए अपने से संबंधित मशीनरी व मैन पावर को तैयार रखें। जिला एवं उपमंडल स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम को 2400 घंटे एक्टिव रखा जाए, ये भी निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त हेमराज वैरवा ने जिला वासियों से आग्रह किया है कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में तत्काल जिला आपदा प्रबंधन केंद्र के टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क करें। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निवेशकों को हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा, प्रदेश निवेश की दृष्टि देश के सर्वोत्तम गंतव्यों में से एक है। मुख्यमंत्री ने शनिवार देर शाम द इंस एंटरप्रेन्योरशिप चंडीगढ़ द्वारा आयोजित चंडीगढ़ लीडरशिप कॉन्क्लेव एवं 23वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधा और सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2400 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार नई औद्योगिक नीति ला रही है, जिसके तहत बिजली दरों को कम रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर है। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक और जलवायु संबंधी प्रतिकूलताओं के कारण इन क्षेत्रों में विकास संबंधी गतिविधियां चुनौतियों से भरी रहती हैं। लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी और भरमौर जैसे दुर्गम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कम आबादी, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और लंबे समय तक रहने वाली बर्फबारी विकास कार्यों तथा जन सेवाओं की पहुँच को चुनौतीपूर्ण बनाती रही है। वर्तमान में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जनजातीय विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, आजीविका, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हिमाचल के प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को पहचान दिलवाने के उद्देश्य से सरकार नवीन कदम उठा रही है। इस क्रम में राज्य सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट थ्री प्रोडक्ट कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को विशेष पहचान दिलाने तथा स्थानीय लोगों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर सृजित करने के प्रयासों की गति प्रदान की जा रही है। इस पहल के अंतर्गत प्रत्येक जिले से 3-3 उत्पादों सहित प्रदेश के कुल 36 उत्पादों का चयन उनकी आर्थिक संभावनाओं, बाजार में मांग तथा स्थानीय महत्व के व्यापक आकलन के आधार पर किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 18 जुलाई 2026 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। देश की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस के ने अंतरिक्ष में परचम लहराते हुए अपने रॉकेट विक्रम 1 पर सफल परीक्षण पूरा कर लिया। पूरी तरह से स्वदेश में विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम 1 ने दोपहर 12:08 पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लॉन्च पैड से सफल उड़ान भरी। इस ऐतिहासिक मिशन को मिशन आगमन नाम दिया गया है, जो अंतरिक्ष में भारतीय निजी क्षेत्र के एक नए युग के प्रवेश का प्रतीक है। अमेरिका के बाद भारत ऐसा दूसरा देश है जिसके प्राइवेट सेक्टर ने अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने में सफलता हासिल की है।
हिमाचल में ड्रेनेज सिस्टम से सड़कें सुरक्षित होंगी। लोक निर्माण विभाग ने राज्य में सड़कों को मानसून के दौरान होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ड्रेनेज इम्प्रूवमेंट के तहत कार्यों की विस्तृत प्रक्रिया और दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सड़कों पर जल निकासी की वैज्ञानिक व्यवस्था विकसित कर बार बार होने वाले कटाव, सड़क धंसने, जल भराव, भूस्खलन और कलवर चौक होने जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान करने के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति को बिना कारण बताए अस्वीकृत करने के निर्णय को रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रशासनिक या सरकारी प्राधिकारी के पास बिना तेज तर्क के व स्पष्ट कारणों के भेदभावपूर्ण तरीके से काम करने की पूर्ण शक्ति नहीं है। निर्णय लेना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। ये आदेश न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने शिवा एजुकेशनल सोसाइटी की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। प्रदेश में कृषि सीजन के दौरान बीबीजी रामजी योजना के तहत होने वाले काम नहीं होंगे। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत राज्य सरकार ने प्रदेश में कृषि सीजन के दिनों को अधिसूचित कर दिया है। इन दिनों में योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों को रोजगार नहीं मिलेगा और वे अपनी खेती कर सकेंगे। कृषि सीजन 60 दिन का होगा, जिसे ग्रामीण विकास विभाग ने अलग अलग सीजन के हिसाब से बांटा है ताकि मजदूरों को नुकसान ना हो। कृषि विभाग ने कृषि सीजन को अधिसूचित कर दिया है और प्रदेश के सभी जिलों में खंड स्तर पर उसी हिसाब से रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के साथ हिमाचल ने राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान कायम रखी है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट PGID 2025-26 में प्रदेश के 6 जिले उत्तम 3 श्रेणी में आए हैं। यूडाइस रिपोर्ट में भी हिमाचल की सफलता सामने आई है। प्रशासनिक सुधार के लिए उठाए सख्त कदम व स्कूलों में निगरानी बढ़ने के कारण ही हिमाचल शिक्षा में पड़ोसी राज्य से आगे निकला है। स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली को बेहतर तरीके से लागू किया है। वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के साथ लगते प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च स्कूलों को जोड़ा गया, इससे स्कूलों में निगरानी बढ़ी। प्रदेश के कुल 36 उत्पादों का चयन उनकी आर्थिक संभावनाओं, बाजार में मांग तथा स्थानीय महत्व के व्यापक आकलन के आधार पर किया गया है, जिसमें बिलासपुर से अदरक, रेशम उत्पादन और मत्स्य पालन, चंबा से चंबा चप्पल, सफेद मक्की और ऊन, हमीरपुर से हल्दी, बांस और मक्की, कांगड़ा से कांगड़ा चाय, कांगड़ा लघु चित्रकला और गिलोय, किन्नौर से हिमाचली चिल्ली तेल, किन्नौरी शॉल और चिलगोजा, कुल्लू से ट्राउट मछली, हेम्प ऑयल और कुल्लू टॉपी, लाहौल स्पीति से सी वक्थौर, पुल्ले और हरी मटर, मंडी से सेपू बड़ी, धातु शिल्प तथा पत्थर या लकड़ी की नकाशी, शिमला से सेब आधारित उत्पाद, स्थानीय शहद, जौ का माल्ट एवं आटा तथा गुच्छी, मशरूम, सिरमौर से लहसुन अदरक और सिरमौरी लोइया, सोलन से मशरूम, टमाटर और औषधि उत्पाद तथा ऊन से आलू, लीची और ड्रैगन फ्रूट शामिल हैं। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए।
2: लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
2: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आंख में बेटियों को बलि मत चढ़ाएं। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का योगदान है।

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो
2: अरे भूल गए भूल गए भूल गए अरे भूल गए भूल गए भूल गए।
1: चुप यार, पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो
3: पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई

0: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर? चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुरबक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता
3: है। और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो।
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: अरे ले आओ यार नाश्ता।
0: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
5: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
6: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
1: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
6: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
5: अरे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
6: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या? हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। आओ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

मग सनि धनि सगमा मग सनि धनि सगमा मग सनि धनि सगमा।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए। लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
3: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आंख में बेटियों को बलि मत चढ़ाएं। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का योगदान है।

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो
2: अरे भूल गए भूल गए भूल गए अरे भूल गए भूल गए भूल गए।
1: चुप यार। पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाओ।
2: सभा लगी है, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है, ध्यान से सुनना।
3: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
4: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
5: बढ़िया।
4: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
6: कितना टाइम?
4: अरे पूरे 2 घंटे।
6: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुरबक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
7: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
6: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
4: डॉक्टर।
7: डॉक्टर?
4: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
6: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
4: टीबी?
6: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
7: वो किसी को भी हो सकता है।
6: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
4: चलो
6: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: अरे ले आओ यार नाश्ता।
3: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
8: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
3: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
4: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
3: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
8: अबे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
3: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या? हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं नाश्ता बना लेती हूँ।

में हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदार दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा, जा।

स्टेशन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून्ड विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।